0: हमारा कोई शो होता है सुपर हिट तो आप कहते हैं और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं। Presenting the encore of your favorite shows. Another day, another time. For your listening pleasure only. Because super hits deserve a repeat. Check out the encore show schedule on our app menu.
1: Only on Radio Musti 24/7 Live. A part of Musti Media Network Singapore.

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: वो कहते हैं ना कि सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, जब तक तुम देख ना लो तब तक बिल्कुल विश्वास मत करो। गुड मॉर्निंग, दिस इज मस्ती मैडनेस। अगर आप हमारी कोई भी खबर देखना चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं 9151893 पर। मत मानो जब तक तुम हमें चैलेंज ना करो।
2: मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
3: Are you sure you wanted to say that? Are you? Just asking. Good morning.
1: नहीं, पॉइंट सिर्फ ये है कि भाई हम जो भी बताते हैं वो सब रियल होती है, यू नो, वी डोंट मेक अप दिस न्यूज, दैट्स द पॉइंट। एंड एट द सेम टाइम अगर आपको कोई ये कहे कि आपकी 4 मिलियन की लॉटरी लगी है तो आप शॉपिंग नहीं करने पहुंच जाते। सबसे पहले आप जाके उसको रिसीव करते हैं, राइट? व्हाट वुड यू डू अगर तेरी 4 मिलियन की लॉटरी कोई कहे, हे, जो तूने उस दिन टिकट खरीदी, यही है, तू जीत गई, हाँ, तो तू क्या शॉपिंग करने पहुंच जाएगी पहले, या तू पहले
3: लेना तो पड़ेगा ना,
1: समझदारी
3: करने के लिए।
1: अब एक सिंगापुर की लड़की ने क्या किया था कि वो इतनी खुश हो गई जब उसको किसी ने कहा कि भाई वो 4 मिलियन की लॉटरी जीती है, तो उसने अपनी जो करंट सेविंग्स थी सारे गिफ्ट्स और सेलिब्रेशंस में मतलब जाके कर दी, सारी की सारी खत्म कर दी। उसके बाद वो जब लेने गई तो उसको रियलाइज हुआ दैट शी हैड मिसरेड द नंबर एंड द एक्चुअल विनिंग वाज जस्ट $40। सो बहुत ही बड़ा धोखा, इसे कहते हैं आंखों का धोखा और नसीब का धोखा। एंड देन ऑफ कोर्स दैट टर्न्ड आउट टू बी द मोस्ट लाइफ चेंजिंग मोमेंट, राइट? बिकॉज होप, हेस्ट, रियलिटी, जल्दी जल्दी। तो कहते हैं ना, जल्दी जो भी करते हैं वो क्या होता है, क्या कहते हैं हिंदी में, जल्दी का
3: काम शैतान का होता है, पर सब्र का फल भी मीठा होता है, ये भी कहते हैं। कौन सी माने, विच वन?
1: सब्र तो इसने काफी किया था, मीठा नहीं हुआ फिर भी मुझे।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोर स्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: गुड मॉर्निंग जी हाँ बिल्कुल, रेडियो मसी 24/7 पर. लाल घाघरा पहनकर तो नहीं, लेकिन हाँ मतलब ठीक ठाक से कपड़े पहनकर पहुंचे हुए हैं मैं और अंतारा. इट्स मसी मैडनेस एंड ऑफ कोर्स आपका फेवरेट शो है.
1: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो.
2: हाँ जी हाँ जी, तो ये सूचना जनहित में जारी है कि जब आपको कोई चीज नहीं पता हो और आप उसके बारे में क्यूरियस हो तो आप प्रॉपर रिसर्च कर लो. हाँ, अपना दिमाग बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम्स.
0: अग्री. तो क्या हुआ इस केस में?
2: अहमदाबाद चलते हैं. अहमदाबाद में हमारे, इट्स अ ट्रेजिक केस ओके व्हिच हैपेंड. हमारे जो भाई है, तो अब क्या था कि ये जो है जिस मोहतरमा के साथ करने पहुंचे, जो उनको करना था, जो करते हैं, जो बहुत ही प्लेजरेबल होता है, तो वो करने के लिए अब वो ढूंढ रहे कॉन्डम. अब उन्हें मिला नहीं कॉन्डम. तो बट उनको था कि भाई प्रोटेक्शन तो बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं तो बिना कॉन्डम के तो, और करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है. तो ये चक्कर में भाई ने क्या किया, ही टुक सुपर ग्लू.
0: है
2: सुपर ग्लू लेकर टिप पे लगा दिया ताकि वो कॉन्डम का काम हो,
0: ताकि सामान बाहर नहीं आए.
2: हाँ
0: है? तो
2: मतलब टिप पे लगा के उसको ब्लॉक कर दिया कि वहां से सामान नहीं निकले.
0: तो फिर ओके, आई हैव लोड्स ऑफ क्वेश्चंस राइट नाउ ऑब्वियसली.
2: Me too. I also have loads of questions, but then poor thing, he's no more.
0: Haan, obviously, he's no more.
2: Yeah.
0: Because obviously the body could not take the okay. But yeah. Super glue se. Oh my God, this is scary, guys. I think we need to understand the basic difference between what a protection does versus what super glue does. Matlab. बहुत दुख हुआ मुझे सुन के कि वो क्या क्या करते हुए निकल पड़े और बिना अपनी सर्वोच्च जिसे कहते हैं.
2: आई नो, मतलब सुपर ग्लू कहीं पे भी नहीं लगा सकते, जस्ट
0: जी उनको जन्नत में
2: खुशियां
0: मिले. जी हाँ बिल्कुल गलत बात.
3: You're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.

0: percent off, 40% joy alukas,
1: 40% off. Oh my god, let's go, let's go.
2: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Soon, soon, baba, soon, soon, baba, soon, soon, soon. Joy Alukas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joy Alukas, the world's favorite jeweler.
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ.
4: मैं आरजे अनुपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ.
5: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां.
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग. The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: हाँ तो भाई इंडस्ट्रियल जो ग्लू होती है उसको गलत जगहों पे, उसको शरीर के किसी अंग पे इस्तेमाल ना करें, हमारी पिछली न्यूज़ उस बारे में थी। लेकिन ये वाली न्यूज़ ऐसी है कि जब आप किसी से विवाह करने पहुंचते हैं, जब आप शादी करने पहुंचते हैं किसी के साथ में, तो आपका प्यार कितने दिन तक लास्ट करता है, मतलब ये बताएं।
2: मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज़ भी होती है गैस।
3: बट बड़े सारे इसमें तो मतलब बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि आप कितना लास्ट कराना चाहते हो।
1: जी बताएं, कितना लास्ट मतलब क्या लास्ट प्यार आपकी क्या मतलब, क्या हवस, क्या मतलब शादी में प्यार कितने सालों तक रहता है ऑन एन एवरेज अकॉर्डिंग टू यू।
3: ओके, वेरी रॉन्ग पर्सन टू आस्क, बट देन
1: ओके, आई एम नॉट गोइंग टू गो देयर नाउ। द थिंग इज, मैं बात कर रही हूँ एरिका लबरी की। अब ये जो एरिका है ना, इसने 2007 में आईफिल टावर से शादी करी थी, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि भाई उसको प्यार हो गया था तो हो गया था, इमोशनल रोमांटिक वॉट एवर, शी लव्स दोज इंटीमेट इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, जिससे कि उसको प्यार हो जाता है। अब 15 साल जैसे उसकी शादी को बीते, उसने बोला कि अब मेरे को प्यार नहीं है इसके साथ, मतलब खत्म हो गया मेरा प्यार, ठीक है। तो उससे पूछा अब क्या करोगी, तो उसने कहा मुझे आईफिल टावर से डिवोर्स चाहिए क्योंकि मुझे अब एक वुडन फेंस से प्यार हो गया है, तो मैं अब उस कनेक्शन को काफी डीप, मीनिंगफुल, परफेक्ट समझती हूँ और बहुत वो हाईली अपीलिंग है, एंड दैट्स व्हाई आई वुड लाइक टू गो गेट मैरिड टू दिस फेंस नाउ। नशा तो कहीं से भी आ सकता है ना प्यार में,
3: मैं बोलूं जो मेरे दिमाग में आ रहा है।
1: नहीं बिल्कुल नहीं, तुम शेप्स की बात नहीं करोगी, बिल्कुल नहीं करोगी, और हम आगे बढ़ेंगे। हाउ डू आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग, ओ माय गॉड।

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।
2: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space, Dear Masti, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: मतलब आजकल मुझे ऐसा लग रहा है कि कोर्ट बड़ा बिजी चल रहा है, हर तरफ से केसेस ही केसेस आ रहे हैं इनके पास।
1: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो, दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो।
2: भाई कुछ ऐसी चीजें जिंदगी में जो कभी खत्म नहीं होंगी, जैसे कि हेल्थ केयर, जैसे कि एजुकेशन और जैसे कि कोर्ट केसेस। वाह, इन्हीं कमाल के शब्दों के साथ में आगे आपकी खबर अंतरराष्ट्रीय।
0: फाजिल दोस्त, 2022 के केस की तरफ आपका थोड़ा सा ध्यान चाहेंगी।
2: जी बिल्कुल।
0: तो इसमें कुछ ऐसा हुआ कि कभी ये जो है, कई सारे फैमिलीज, स्पेशली आई कैन टॉक अबाउट इंडियन फैमिलीज, कि ऐसा होता है कि जो इन लॉज होते हैं वो कहते हैं कि भाई कब दे रहे हो बच्चा, कब दे रहे हो। यहाँ पे घर वाले मतलब अपने बेटे के पेरेंट्स कह रहे हैं कि बच्चा दे दो, बच्चा कब कर रहे हो। तो कुछ ऐसा हुआ कि एक रिटायर्ड कपल, उत्तराखंड इंडिया की ये बात है, ठीक है, ये इन्होंने सू कर दिया अपने बेटे बहू को।
2: ओके, क्योंकि वो प्रेग्नेंट नहीं हो रहे थे।
0: $1,000 का सू अमाउंट है, क्योंकि 6 साल हो गए इनका, उनकी शादी को, बच्चा नहीं दिया इनको।
2: तो अगर 3,000
0: उसके बाद उनकी उनकी जो पॉइंट्स टू बी नोटेड मिलोर्ड थे, वो थे कि भाई हमने अपनी लाइफ की सेविंग्स लगा दी इस ओनली सन पे, इसके पायलट ट्रेनिंग के पैसे दिए, इसकी शादी कराई, इसकी कार दिलाई, इसका हनीमून फंड किया। तो मतलब ये तो मेंटल हरासमेंट हुआ ना, हम बच्चा मांग रहे, दे दो अब बच्चा।
2: बिल्कुल बिल्कुल हरासमेंट हुआ। नहीं, तुमने उसको ठीक से वो काम करना नहीं सिखाया जिसकी वजह से बच्चा जल्दी हो जाता, वो भी सिखा देते। मतलब तुमने ढंग से उसको क्लासेस दी नहीं, इसीलिए नहीं हो रहा। तुम्हें क्या लगता है?
0: इतना जब घुसी गए हो तो थोड़ा और भी, मतलब पूरा ही घुस के सभी कुछ बता ही दो, फिर
2: इनको बता दो कैसे करना है, क्या करना है, क्या पैदा करना है। मतलब आई डू नॉट अंडरस्टैंड वन थिंग, और मेरा लॉजिक बड़ा सिंपल है, जैसे शादी हो इंसान को रहना चाहिए अलग, दैट इज द बेसिक थिंग, ठीक है। प्यार बना रहेगा और कई केसेस में जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं शायद जिंदा भी रहेंगे, क्यों भाई, ठीक बात है ना?
0: अग्री
3: Hit us on the gram. It's Radio Musti 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musti 24/7 Singapore. Check it out.

0: आइए आइए, हमारा तीसरा घंटा। ओ गॉड, आप जितना भी चाहें ना, हम नहीं बढ़ा सकते 3 घंटे ज्यादा ये शो, सो हमें ये बात लिखना बंद करो प्लीज। गुड मॉर्निंग।
1: मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस।
2: हम पे भी थोड़ा तरस खा लो, मतलब अपने बारे में सिर्फ मत सोचते रहो।
0: अरे मेरा तो जिंदगी से, जीवन से, इस दुनिया से विश्वास उठ जाएगा अगर मैं सिर्फ यही वाली खबरें पढ़ती रहूंगी पूरे दिन। सीरियसली आई टेल यू, अभी लेटेस्ट देखो क्या है। अगली खबर तो मतलब बदबूदार खबर है, आप सुने जरा। ब्रिटेन का पहला साइबर फार्ट क्राइम। ओके, साइबर फार्ट क्राइम। ओके, उसमें एक 25 साल की लड़की है वेल्स से, एंड उसने शी प्लीडेड गिल्टी टू हरासमेंट आफ्टर सेंडिंग एक्सप्लिसिट फार्टिंग वीडियोस एंड सेल्फीज अपने एक्स पार्टनर, अपने बॉयफ्रेंड के एक्स पार्टनर जो है लड़की उसको। अब बताओ, इतना भी क्या चल रहा है तुम्हारा कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को तो नहीं भेज रहे हो कुछ भी, उसको नहीं पनिश कर रहे हो, लेकिन तुम उसकी जो नई गर्लफ्रेंड है, ठीक है, उसको तुम भेजे चले जा रहे हो। अब बताओ ये क्या है, मतलब मल्टीपल वीडियोस 10 दिन में व्हाट्सएप पे अपना स्मार्टफोन जो है ना उसका कैमरा अपने बम के नीचे रख के, एंड शी इज रिकॉर्डिंग हरसेल्फ पासिंग गैस व्हाइल स्मोकिंग एट द लेंस। मतलब तुम योगा का ये आसन सोचो कि क्या चल रहा है इसमें, ठीक है ना?
2: वेरी टिपिकल।
0: हाँ, तो पुलिस ने वार्निंग दी कि भाई बंद करो, तो फिर उसने और भी भेजे। न्यू ईयर्स डे पे भी उसको वैसे ही विश किया कि ये ले तेरे लिए एक और वीडियो। ये कौन सा तरीका है?
2: इसको जस्ट लाइक कोई जाके इसको बताना चाहेगा कि वो जो पास कर रही है तो वो खुशबू वहां तक पहुंच नहीं रही है, बाय द वे, जस्ट लेटिंग
0: उससे भी बड़ी बात तो ये लगी कि पनिशमेंट क्या थी, 100 pounds इन कॉम्पनसेशन टू द विक्टिम। सोच उसका मेंटल, सोच हालत क्या होगी ये सब देख के, लेकिन उसको 100 pounds मिले और 200 pounds कोर्ट के कॉस्ट में। मतलब दैट इज इट। इसका मतलब है कि एनीबडी कैन सेंड ऑल दीज वीडियोस एंड गेट अवे विद जस्ट 300 pounds। इसी बात पर अंतरा की रिक्वेस्ट पे उड़ी उड़ी जाए गाना।
2: यहाँ से उड़ते हुए आपके पास भी आ सकती है रेणुका।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: भाई क्या क्या चीजें हो रही है दुनिया में. दीज खबर्स नेवर स्टॉप अमेजिंग मी.
3: मस्ती मैडनेस जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल.
4: मस्ती मैडनेस है, रेणुका है, अंतरा है और अजीब अजीब सी खबरें हैं. जी हाँ बिल्कुल. अब 10 बजे तक हम आपके साथ हैं. अगर आपको एनकोर सुनना है तो अंतरा कल के दिन में सुन लेंगे ये. हाँ
2: बिल्कुल.
4: कब?
2: शाम के टाइम में आपको इसको एनकोर सुनाई देगा और मैं आपको ले जाना चाहती हूँ इंडोनेशिया.
4: चलो
2: अब देखो, मुझे पता नहीं इनसे कोई ये सवाल पूछेगा नहीं पूछेगा, बट वेल हमारे ये जो भाई साहब हैं इन्होंने ऑनलाइन किसी से मिले, इनको प्यार हुआ, इन्होंने बिल्कुल प्रॉपर उसमें ट्रेडिशनल उसमें वेडिंग सेरेमनी में शादी भी की. 2 हफ्ते हो गए ठीक है शादी को. 2 हफ्ते के बाद ही गॉट टू नो कि जिससे शादी की वो तो औरत है ही नहीं.
4: 2 हफ्ते के बाद
2: वो तो बंदा निकला. तो मेरा सबसे पहला सवाल भेजे जो आपने अभी कहा कि 2 हफ्ते के बाद तुझे पता चला कि मतलब क्या इसमें.
4: ठीक है हो भी सकता है भाई, प्यार सिर्फ शरीर से तो नहीं होता ना, आत्मा से होता है. वो आत्मा से करने में लगे हुए थे ना तब तक. इट्स ओके, इट्स अंडरस्टैंडेबल. अंतरा डोंट, हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता है ठीक है, कि पिल पड़े बस. मैं भाग रही हूँ. मुझे
2: भाई रियलिस्टिक होने को आजकल पिल पड़ना बोलते हैं. यहाँ पे हमारे फाजुल दोस्त इज स्टैंडिंग विद कि तुम समझो ये आत्मा का मिलन है. उसने आत्मा से प्यार नहीं किया होगा. भाई को पता ही नहीं चला 12 दिन तक बंदा है बंदी है.
4: मतलब इतनी भी आत्मा में क्या घुस गया था वो, थोड़ा बहुत शरीर चेकआउट तो कर लेता.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: कभी कभी हम जिंदगी में ऐसे मोर्चे लेके आगे पहुंच जाते हैं कि हमें उसके बाद घबराहट खुद में होने लगती है. बेटा मुझे कोई मार तो नहीं देगा जो मैंने किया हरकत. मैं ये बात ये आप भी थी. जी हाँ, अपनी बात बता रही हूँ इस टाइम पर रेडियो मसी 24/7 पर. मुझे ऐवे थोड़े कहते हैं झांसी की रानी.
3: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो. दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो.
2: मैं रेणुका कह रही थी शाम को मेरे से चेक कर लेना एक बार कि मैं घर सही सलामत पहुंच गई कि नहीं. क्योंकि यहाँ पे चल, मैं बताती हूँ, यहाँ पे चल रहा है हमारे फ्लोर पे काम, ठीक है, बिल्डिंग पे ऑफिस के. और क्योंकि इतना शोर होता है ना, ऑब्वियसली इट अफेक्ट जब हम लोग यहाँ पे शो वो कर रहे होते. तो रेणुका ने उनको बोला कि भाई ये एक स्टूडियो है, आपको हम बताना चाहते हैं आप कि यहाँ पे ये सारी चीजें नहीं कर सकते हैं. स्पेशली जब शोज वगैरह हम लोग कर रहे होते हैं तो आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा. देखो अब एक बात है रेणुका की, आप या तो उनके साथ कोऑपरेट कर लो, ठीक है, फिर हाँ बोल के अगर आपने अपनी शान बनती दिखाने की कोशिश की फिर तो फिर आपने रेणुका का कहर देखना है, ठीक है. तो वही किया, ये शाणे बनने चले थे, ठीक है. इन्होंने इनको रूल समझाने की कोशिश की तो इन्होंने कहा अब तो हम बाय द बुक ही जाएंगे, हम रूल ही फॉलो करेंगे. बिल्कुल रूल्स फॉलो करने हैं, आई एम ऑल फॉर रूल्स, लेकिन फिर रूल्स फॉलो करो. अगर आप दिन में शोर नहीं मचा सकते हैं तो नहीं मचा सकते हैं. अब इस टाइम अगर सुबह के 9:30 हो रहे हैं, मतलब होने वाले हैं, तो सीधी सी बात है तुम ऐसे नहीं कर सकते हो. तुम आके ड्रिलिंग नहीं शुरू कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये ऑफिस टाइम है. बस लेकिन मुझे बस यही खतरा है कि मैं अगर शाम को घर ना पहुंची तो आप सब देख लेना कि भाई मैं गुंडों से पिटवाई गई हूँ.
4: तेरी चोटी है परांदा तेरा लाल,
2: क्योंकि मैंने काफी एस्केलेट कर दिया ये बात.
4: परांदा तेरा लाल वो रूप दियो रानी,
2: और सुबह से बिल्कुल शांति है यहाँ पे. घबराहट तो मुझे उस बात की हो रही है.
4: रानी को परांदे को
2: रेडियो मस्ती 24/7. जी हाँ, फुल ऑन मस्ती यहाँ पर ऑन मस्ती मैडनेस. जस्ट फ्यू मिनट्स लेफ्ट एंड 2-3 खबरें रह गई हैं. सुने बिना मत जाना, आफ्टर ऑल आपको भी तो गॉसिप के लिए कोई खबरें चाहिए वीकेंड पे. नहीं, गुड मॉर्निंग.

0: नमस्कार नमस्कार। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर सुबह 7 बजे से जमे हुए हैं मैं और अंतरा, और इस समय हो रहे हैं 9:33:18।
1: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें, और हमारा ये क्रेजी शो, दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती।
0: मौजा ही मौजा चल रही हैं। बताइए अंतरा जी, आपकी अगली खबर आखिर क्या है?

0: दिस बंदी, तो उसने अपने पहले बॉयफ्रेंड का नाम जो है ना वो अपने सर पे लिखाया हुआ था, टैटू कराया
1: सर पे.
0: हाँ, ये लाइक फोरहेड.
1: व्हाई वुड एनीबॉडी डू दैट?
0: शी डिड. ओके, बट द प्रॉब्लम वहां पे नहीं है. प्रॉब्लम ये हुआ कि उससे उसका ब्रेकअप हो गया. सो उसने अपने टैटू आर्टिस्ट को बोला कि अभी इसमें ना एक स्ट्राइक मार दो, मतलब कट कट, ये हो गया, इसका चैप्टर क्लोज हो गया है. फिर उसके बाद जो नेक्स्ट बॉयफ्रेंड बना तो उसने कहा कि देखो मेरी पैशन तो उतनी है, सेम टू सेम, तुम्हारे लिए भी. तो उसी के बगल में उसका नाम लिखाया. फिर उससे भी ब्रेकअप हो गया, तो उधर भी कट मरवा दिया कि अब इसका भी काम हो गया. तो ये जो है कि जब जब अभी तो तीसरा नाम लिखा हुआ है, उस पर कट नहीं आया अभी तक, तो अब वो चेहरे पे, चीक पे आ चुका है. एंड आई डोंट नो वेयर इट इज गोइंग इसके बाद.
1: यार मैं कहती हूँ ना, पहली बार अगर आपके साथ ऐसा हो तो वो आपकी गलती नहीं होती, लेकिन अगर दूसरी बार हो, तीसरी बार हो, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होता. Maybe she enjoys all that. है ना, हो सकता है ना.
0: हम ना, मुझे ऐसा लगता है रेनू का, पता नहीं आपको फील होता है कि नहीं होता है, और I'm for our listeners also, कि हम दोनों ना ये शो करते करते एक ऐसे स्टेज पे पहुंच चुके हैं अपनी पर्सपेक्टिव के उसमें, कि हम एक्चुअली वी आर स्टैंडिंग एंड वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दीज पीपल.
1: ये बड़ी गलत बात हो गई है.
0: है ना, कुछ कुछ तो उसका रीजन रहा ही होगा.
1: अब हम रैशनलाइज करने लग गए हैं.
0: मजा आ ही रहा होगा.
1: ओ नो, हम तो मतलब रैशनलाइज कर रहे हैं इनका बिहेवियर. हमें भी तो ऐसा कुछ नहीं हो गया. ओके, दैट्स स्केरी.

टू रूलिंग द काउंटडाउन. ये है मस्ती टॉप 20 पंपिंग अप फ्राइडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स. द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स मस्ती टॉप 20 ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव. द ओनली लाइव बॉलीवुड रेडियो अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया सिंस 2009.

0: अच्छा भाई, अब हम जा रहे हैं, लेकिन अंतरा जी, मेरा प्लान इस वीकेंड का है कि मुझे डेफिनेटली जाके कुछ सोना, कितना सोना है, खरीदना है।
1: दुनिया क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो।
0: एब्सोल्युटली, बिल्कुल, और वो भी जॉय लुकास में 40% ऑफ मेकिंग चार्जेस। आई एम नॉट किडिंग, इट इज जस्ट एन अमेजिंग ऑफर, आज तक नहीं हुआ है, राइट? व्हाट डू यू से?
2: It's nice, but मेरे तो plans अलग है bro.
0: तू कहाँ जा रही है?
2: Because already हाँ, मैं, मेरा already reservation हो रखा है, शाही महारानी जाएंगे, इतने दिन से promote कर रहे हैं यार, and it's such a big thing, right? शाही महारानी has always been a part of हमारी journey, and अब जब 25 साल उनके पूरे हो रहे हैं, and you know it's so special, तो बनता तो है, maybe not to relive, but also to make new memories over there.
0: बनता तो है, there is no doubt about it. 25 years they are completing at Raffle City. Of course, वो उससे भी कहीं पुराने हैं, लेकिन 25 साल, और उसमें वो जो 6 dishes दे रहे हैं ना यार, वो $25 की, I think वो offer बिल्कुल miss करने लायक नहीं है. You're right. So I can do, I can go and buy some sona. कितना sona है, followed by lunch or dinner at Shahi Maharani. How's that?
2: आवाज नहीं आ रही. अच्छा, मेरे साथ नहीं जाना ना, तब ठीक है.
0: ना ना, तेरे साथ नहीं जाना, बिकॉज जब मैं शाही महारानी जाती हूँ ना, उस टाइम पर मैं किसी के साथ नहीं जाना चाहती, क्योंकि मुझे पता है कि वहां जाके मैं जिस तरह से टूट पड़ती हूँ खाने पे. ओनली आई नो
3: अंटे, अंटे,
0: अंटे, व्हाट अ सॉन्ग. जी हाँ, यहाँ पर
2: साथ में भी टूट पड़ सकते हैं. वो कहना है, आई विल ट्रीट यू विद द पापड़ी चाट.
0: ठीक है, डन है. चलिए, तो आप भी शाही महारानी जा सकते हैं, ऑफ कोर्स, फॉर द 25 ईयर सेलिब्रेशन, एंड डोंट फॉरगेट 40% ऑफ मेकिंग चार्जेस फ्रॉम जोया लुकास. बोथ दीज ऑफर्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 एंड फॉर आवर लिसनर्स. फिलहाल के लिए बाय बाय, अब मिलते हैं. और कहाँ मिलेंगे? जी हाँ, मैं सोच रही हूँ, सपने में मिलती है.
2: हकीकत में रेणुका मिलेंगी. केड़ पास जाइए सजड़ा करते हुए.
0: बाय द वे अंतरा जी, मैंने सुना था,
2: आई गॉट ऑल द न्यूज,
0: जी नहीं, मैंने ये भी सुना था कि आपके शो पे, वन ऑफ द शोज, किसी ने रिक्वेस्ट किया था केड़े पास जाइए सजना चला दीजिए. सो यू सी,
2: मैंने चलाया अभी था.
0: इट इज द मोस्ट रिक्वेस्टेड सॉन्ग ऑफ द वीक एज वेल, सो इट डिजर्व्स ऑल द लव दिस इवनिंग. Stay tuned to Bollywood Top Charts. जी हाँ, मैं 5 बजे मिलती हूँ. Bye.
2: Bye.

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
2: मैं आरजे अनुपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
3: लीजिए, समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
4: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
5: Good morning.

0: नाचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे। फिलहाल तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे।
2: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
3: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
4: चेक इट आउट।
5: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
6: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
5: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
6: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
5: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back. अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाजी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
3: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ। जोश में
4: रहो। मेरे करण अर्जुन आएंगे?
0: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे। फिलहाल तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

वेलकम टू योर चिल जोन, मस्ती म्यूजिक कैफे, ओनली म्यूजिक, ओनली मस्ती।

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी, लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Mercy 24/7 Live.
2: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats

0: देखो देखो वो आ गया।
1: सिंगापुर, जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

0: सुनिए यादों का कारवा विद समर। याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने। तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवा में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: हेलो नमस्कार, आदाब तमाम सुनने वालों को सिंगापुर। मैं हूँ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव के जरिए आपसे मुखातिब। मेरा नाम है समर। आप सुन रहे हैं यादों का कारवां विद समर, एक ऐसा शो जिसमें हम यादें ताजा करते हैं, फिल्मों की यादें, फिल्मों से जुड़ी हमारी यादें, उन फिल्मों के बेहतरीन नगमे सुनाते हैं, क्योंकि हर गाना कुछ कहता है और हर गाने के साथ एक कहानी छुपी होती है, कुछ यादें लिपटी होती हैं, है कि नहीं। तो ऐसी कुछ यादों को लेकर इस बार मैं हाजिर हुआ हूँ 1990 के साल से। ये वो फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन साहब ने कमबैक किया था। जी हाँ, जब उनको चोट लग गई थी कुली में, उसके बाद उन्होंने फिल्मों से थोड़ी सी दूरी बना ली थी और फिर वो राजनीति में भी आ गए थे। आपको तो याद ही होगा, उन्होंने इलाहाबाद से एमपी का चुनाव लड़ा और वो जीते, 1984 की बात है। और उसके बाद से फिल्मों से उनकी थोड़ी दूरी बढ़ती चली गई और फिर मीडिया से भी उनका टकराव हुआ, तो कुल मिलाकर उनको बायकॉट सा किया गया था और उनकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम कम और कम से भी कम होती जा रही थी। ऐसे में उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी और ऐसे जमाने में एक फिल्म आई जिसने उनके करियर को फिर से पुश दिया और ये वो फिल्म थी जिसका नाम था कौन सुने फरियाद। नहीं नहीं, पहले इसका नाम ये होने वाला था लेकिन बाद में हुआ आज का अर्जुन, जो केसी बोकाड़िया साहब के डायरेक्शन में बनी और बप्पीदा का म्यूजिक लिए जबरदस्त हिट हो गई। अमिताभ बच्चन के साथ हीरोइन थी इसमें जयाप्रदा, अमरीश पुरी, अनुपम खेर, सुरेश ओबेरॉय और अमिताभ बच्चन की जो सिस्टर बनी थी राधिका सरत कुमार, जिन्हें फिल्म फेयर के बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया था, लेकिन अफसोस ये उन्हें मिला नहीं। लेकिन अमिताभ बच्चन और जयाप्रदा को इसमें किसी भी कैटेगरी में नॉमिनेट नहीं किया गया। फिल्म जबरदस्त हिट हो गई और इसके गाने तो हिट होने ही थे। बप्पीदा ने कमाल का म्यूजिक दिया, वो गाना गोरी है कलाइया तुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां, लता जी की आवाज और शब्बीर कुमार ने उनका साथ दिया, गाना सुपर डुपर हिट हो गया। इसके अलावा एक और गाना था जिसका जिक्र मैं जब भी करता हूं तो मुझे समझ नहीं आता कि अमिताभ बच्चन जैसे समझदार इंसान ने ये वक्त क्यों दिया, 3:30 बजे। हाँ, चले आना तू पान की दुकान पे 3:30 बजे। फिर मुझे जब बड़ा हुआ तो समझ में आया कि भाई 3:30 बजे सारा गांव सो जाएगा तो ऐसे में मिलना आसान हो जाएगा। भीमा का रोल कर रहे थे अमिताभ बच्चन और कमाल का उन्होंने रोल प्ले किया। एक तरह से एक सीधे साधे इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन था अर्जुन में, जो बदला लेता है गांव के जमींदार से, जिसके गुनाहों और जुल्मों से सारे गांव वाले त्रस्त हैं लेकिन कोई बोलता नहीं है। तो ऐसे में अर्जुन आता है और गांव वालों को उसके जुल्म से आजाद कराता है। ये थी फिल्म की कहानी। फिल्म हिट रही और उसने सिल्वर जुबली की। सिल्वर जुबली बहुत सारे लोग जो आज के हमारे सुन रहे यंगस्टर्स वो नहीं समझते होंगे। सिल्वर जुबली एक फिल्म तब करती थी जब वो 25 हफ्ते लगातार एक सिनेमा हॉल में चलती थी। 25 हफ्ते, 25 वीक्स, आज तो सोच भी नहीं सकते। 100 दिन भी अगर कोई फिल्म चल जाती है तो बहुत बड़ी हिट मानी जाती है और 100 दिन मतलब 12-13 वीक्स। वो दौर ही कुछ और था। तो चलिए उस दौर को जी लेते हैं, इन नगमों के साथ आगे बढ़ते हैं। आप सुनते रहिएगा यादों का कारवां रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। मैं हूं समर आपके साथ।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।
2: वेलकम बैक, मैं हूं समर रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। आज यादों का कारवां गुजर रहा है 1990 के ईयर से। ये वो साल था जब इस दौर की एक बहुत बड़ी म्यूजिकल हिट फिल्म आई। नाम था उसका आशिकी रोमांस। जी, आशिकी सीरीज की पहली फिल्म थी, सीरीज बन गई है बाद में तो, लेकिन इस फिल्म ने कमाल कर दिया था। एक्चुअली इस फिल्म की कहानी कुछ ऐसे शुरू हुई कि गुलशन कुमार साहब ने कैसेट इंडस्ट्री में नया नया पैर जमाया था और वो नए सिंगर्स को बहुत मौका देते थे। ऐसे एक नए सिंगर थे कुमार सानू, जो कोलकाता के क्लब्स में गाया करते थे। जब उनके किसी दोस्त ने उन्हें सलाह दी तो वो मुंबई आ गए और वहां पर भी वो क्लब्स में गाने लगे। यहाँ गुलशन कुमार के एक क्रिएटिव डायरेक्टर ने उन्हें देखा एक क्लब में गाते हुए और उनकी आवाज से बड़े ही इंप्रेस हो गए और उन्होंने कहा कि एक लड़का है जो हूबहू किशोर दा की तरह गाता है। तो उस जमाने में गुलशन कुमार एक सीरीज निकाला करते थे यादें के नाम से, जैसे हम यादों का कारवां कर रहे हैं, ऐसे वो यादें सीरीज निकाला करते थे और उसमें वो कवर वर्जन गवाया करते थे। जैसे रफी साहब, लता जी और किशोर के गाए हुए गानों को वो फिर से गवाते थे और वो उसके लिए कोई ऐसे ही सिंगर्स ले लिया करते थे, उनकी तलाश रहा करते थे उन्हें। तो कुमार सानू ने उनकी किशोर कुमार के लिए जो उनकी खाली जगह थी, वो जो तलाश थी, उसे पूरा कर दिया। और गुलशन कुमार क्योंकि नए नए इंडस्ट्री में आए थे तो वो पुराने लोगों से काम लेना नहीं चाहते थे क्योंकि वो सब बहुत महंगे और एस्टेब्लिश्ड लोग हुआ करते थे। तो उन्होंने मौका दिया ऐसे ही एक नए म्यूजिक डायरेक्टर को, नदीम सैफी और श्रवण राठौड़। ये एक जोड़ी बनाकर कमाल का म्यूजिक दे रहे थे। तो उन्होंने एक एल्बम प्लान किया, नाम उसका आशिकी रखा गया और उसमें 9 गाने रिकॉर्ड किए गए। गाने जबरदस्त हिट थे और इन गानों को गुलशन कुमार साहब ने महेश भट्ट साहब को सुनाया। महेश भट्ट साहब बहुत ही खुश हो गए और उन्होंने कहा, यार इस पर तो एक फिल्म बननी चाहिए। गुलशन कुमार साहब को ये बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा कि अच्छा, फिल्म बननी चाहिए, लेकिन बनाएगा कौन? फिल्म बनाने का मुझे तो कोई एक्सपीरियंस है नहीं। तो उन्होंने महेश भट्ट साहब से रिक्वेस्ट की कि यार आप फिल्म बनाइए, मैं प्रोड्यूस करूंगा। तो इस तरह से ये फिल्म बनी आशिकी, जिसने अपने म्यूजिक से उस दौर के तमाम लोगों को आशिकी में डुबो दिया। फिल्म से निकले कई स्टार्स और छा गए बॉलीवुड के आसमान पर। पहले राहुल रॉय जो इस फिल्म के हीरो थे, उनकी हेयर स्टाइल बड़ी कमाल की थी इस फिल्म में। लोगों ने वैसी हेयर स्टाइल करवा ली थी, बड़े अजीब लगते थे लोग शुरू शुरू में, लेकिन बाद में तो भैया यही फैशन बन गया। अनु अग्रवाल उनकी हीरोइन थी, वो लंबी चौड़ी लड़की और उनकी एक फ्रॉक और उनका जो हेयर क्लिप पर एक रिबन बना हुआ था वो बड़ा ही फेमस हो गया था। इसके अलावा नदीम श्रवण एक नए म्यूजिक डायरेक्टर की जोड़ी के रूप में एस्टेब्लिश हो गए इसी फिल्म से। समीर के लिखे गाने कमाल के हिट हो गए थे। तो इस तरह से ये फिल्म जबरदस्त हिट हुई। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, ओए होए क्या बात थी इस गाने में। और वो सांसों की जरूरत है जैसे, जिस गाने से राहुल रॉय इंट्रोड्यूस होते, कमाल का ये गाना। फिर अब तेरे बिन जी लेंगे हम, कमाल कमाल कमाल। फिर दीपक तिजोरी भी हीरो के दोस्त के रूप में हिट हो गए थे। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि हीरो के दोस्त के रूप में हिट हो गए थे, क्योंकि ये ट्रेंड सेटर हुआ करता है। जो फिल्म हिट हो जाए उसमें आपने जो कैरेक्टर प्ले किया है वैसे ही कैरेक्टर्स आपको आगे भी मिलते हैं। तो आगे भी दीपक तिजोरी को ऐसे ही कैरेक्टर मिले। खिलाड़ी फिल्म अगर आपने देखी है तो उसमें वो अक्षय कुमार के दोस्त बने। तो ऐसा एक चलन है इंडस्ट्री में, तो ये चलन चल पड़ा था और ये फिल्म जबरदस्त हिट हो गई थी। और इस फिल्म का वो गाना है ना, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है वो तुम, ये जो गाना था इसके लिए समीर साहब को बेस्ट लिरिसिस्ट का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था और अनुराधा पौडवाल को बेस्ट फीमेल सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, क्योंकि सारे गाने उन्होंने गाए थे। फीमेल वॉइस जो थी वो उन्हीं की थी। वैसे इस फिल्म की कहानी से जुड़ी एक और कहानी मेरे पास है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ उसे आपको एक ब्रेक के बाद बताता हूँ। फिलहाल ये जान लीजिए कि इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर्स को भी बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, मिलना लाजमी था, इतना कमाल का म्यूजिक दिया था उन्होंने। तो आइए इन गानों को एंजॉय करते हैं और इस दौर के कुछ और गानों के साथ कारवां को आगे बढ़ाते हैं। आप सुन रहे हैं यादों का कारवां रेडियो मसी 24/7 लाइव पर समर के साथ।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या
1: जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।
2: महेश भट्ट के डायरेक्शन में बनी थी फिल्म आशिकी और उन्हीं के डायरेक्शन में बनी एक और फिल्म की मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आशिकी की बात तो पूरी कर लूं। जी तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आप हैं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर समर के साथ, यादों का कारवां में आप सफर कर रहे हैं, प्लीज इस कारवां को आगे बढ़ाइए ऐसे ही। और कुछ यादें जो आपको आ रही हैं इन गानों के साथ, इन फिल्मों के साथ, जो भी आपके साथ जुड़ा है उस दौर का, वो हमसे जरूर शेयर कीजिएगा हमारे फेसबुक पेज पर आकर। फिलहाल हम बात करते हैं फिर से आशिकी की और उसके बाद उनकी एक और फिल्म की बात करेंगे महेश भट्ट साहब की। तो आशिकी की जो कहानी है, कैसे एक गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली लड़की को पसंद कर लेते हैं राहुल रॉय और फिर सारी कहानी होती है आशिकी होती है, तो ये कहानी खुद महेश भट्ट की कहानी से इंस्पायर्ड है। जी आपको शायद नहीं पता हो कि महेश भट्ट साहब की एक और पत्नी रही हैं। जी हाँ, उनकी पहली पत्नी जिनका नाम था लॉरेन ब्राइट, जो बाद में किरण भट्ट हो गई, ये उन्हीं की कहानी है। और पूजा भट्ट और राहुल भट्ट की मदर भी किरण भट्ट हैं। महेश भट्ट साहब से उम्र में बड़ी थी किरण लॉरेन ब्राइट और उनको वो ऐसे ही खिड़की से देखा करते थे, एक गर्ल्स हॉस्टल में रहा करती थी और वहीं से इस कहानी की इंस्पिरेशन उन्होंने ली और एक कहानी पिरो दी। कहानी जबरदस्त हिट हो गई और जब इस कहानी को साथ मिला बेहतरीन म्यूजिक का तो सुपर डुपर हिट हो गई, उस साल की बेस्ट फिल्म, मैं तो कहता हूँ उस डेकेड की बेस्ट फिल्म्स में से शुमार है ये। फिलहाल तो मैं बात करूंगा महेश भट्ट साहब के डायरेक्शन में बनी एक और फिल्म की, आवारगी उसका नाम था। ये थोड़ी सी आर्ट टाइप की फिल्म थी, पैरेलल सिनेमा जिसे कहा जाता है, वो उस दौर की ऐसी एक फिल्म थी, लेकिन इसमें जो कास्ट थी वो कमर्शियल फिल्मों की थी, जैसे कि इस फिल्म में थे अनिल कपूर साहब, गोविंदा, मीनाक्षी शेषाद्री, अनुपम खेर, परेश रावल। म्यूजिक दिया था इस फिल्म का अनु मलिक ने और गाने लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने। इस फिल्म की एक गजल बड़ी हिट हुई, गुलाम अली साहब ने इसे गाया था चमकते चांद को, और इस गजल ने हर टूटे दिल के शख्स के लिए मरहम का काम किया था। अच्छा इसी फिल्म में एक और गाना भी था, ए मेरे साथिया, मोहम्मद अजीज और लता जी की आवाज में गाया हुआ ये गाना, ये भी बड़ा हिट हुआ। एक और गाना बाली उमर ने मोहम्मद अजीज और लता जी की आवाज में था, ये भी सुनेंगे आप तो बड़ा सुकून सा मिलता है दिल को। तो एक काम करते हैं इस फिल्म के कुछ नगमे सुन लेते हैं और उस दौर के कुछ और गानों के साथ इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि गोविंदा और महेश भट्ट साहब की ये पहली और आखिरी फिल्म थी, लेकिन अनिल कपूर साहब के साथ उनकी ये पहली और आखिरी फिल्म नहीं थी, इसके बाद उन्होंने दीवाना मस्ताना में भी काम किया था। चलिए गाने सुने, कारवां को आगे बढ़ाते हैं, भाई बहुत सारी यादें आ जाती हैं इन गानों के साथ, तो सोच क्या रहे हैं, अपनी यादों को आने दीजिए ना हमारे फेसबुक पेज पर। सुनते रहिए यादों का कारवां, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, मैं हूं समर आपके साथ।

0: देखो देखो वहाँ क्या,
1: सिंगापुर जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

0: लिए यादों का कारवा विद समर। याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने। तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवा में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: 1990 के दौर से गुजर रहा है आज का हमारा ये यादों का कारवा रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। मैं हूँ समर आपके साथ। इसी साल यानी 1990 में एक और फिल्म आई, रोमांटिक फिल्म, कमाल की फिल्म, आशिकी जैसी हिट गानों से सजी फिल्म। नाम था उसका, बताऊं या समझ गए आप? चलिए एक और हिंट दे देता हूँ, माधुरी दीक्षित और आमिर खान थे इस फिल्म में। अब तो आप समझ गए, सुपर डुपर हिट फिल्म दिल की मैं बात कर रहा हूँ। इंद्र कुमार साहब ने इसे डायरेक्ट किया था और ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई इस साल की। इसका म्यूजिक भी दो नए म्यूजिक डायरेक्टर्स की जोड़ी ने दिया था, आनंद चित्रगुप्त और मिलिंद चित्रगुप्त ने। जी, आनंद मिलिंद के नाम से आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। फिल्म में अनुपम खेर का रोल बड़ा पसंद किया गया, अनुपम खेर और सई जाफरी दोनों का। ये लड़के और लड़की के पिताजी बने दोनों, लड़की के पिताजी सई जाफरी और बड़े ही कंजूस कबाड़ी वाले अनुपम खेर, ये बड़े हिट हुए थे अपनी कैरेक्टर में। फिल्म के गानों की बात करें तो आनंद मिलिंद का म्यूजिक, गाने लिखे समीर ने और गाने एक से बढ़कर एक हिट हुए। अच्छा, इस फिल्म के गाने आपको बताने की जरूरत है या आप पहचान जाएंगे? मुझे नींद ना आए, उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल का गाया ये गाना जबरदस्त हिट हुआ। फिर एक गाना था हमने घर छोड़ा है, ये उदित नारायण के साथ साधना सरगम ने गाया था, ये गाना भी हिट हुआ। इसके अलावा एक और गाना था खंबे जैसी खड़ी है, ये गाना भी हिट हुआ। हालांकि इसके बोल उतने ज्यादा बढ़िया नहीं थे, लेकिन क्योंकि ये मस्ती से भरा हुआ गाना था तो भाई ये तो हिट होना ही था। रेडियो मस्ती भी हिट है ना, इसीलिए तो हिट है क्योंकि इसमें मस्ती है। तो जिन लड़कियों की हाइट उस वक्त ज्यादा होती थी ना, उनके लिए गाना बहुत गाया जाता था, खंबे जैसी खड़ी है। इसी साल आमिर खान और माधुरी दीक्षित की एक और फिल्म आई थी, दीवाना मुझसा नहीं। हालांकि ये फिल्म बहुत ज्यादा कुछ कमाल कर नहीं पाई। और आमिर खान की अगर मैं करियर की बात करूं तो शुरू शुरू में उनको जो बहुत सक्सेस मिली थी कयामत से कयामत के बाद, वो ज्यादा इसे रख नहीं पाए, इसे भुना नहीं पाए, क्योंकि वो ऐसी फिल्में करते रहे, तुम मेरे हो, लव लव लव, जवानी जिंदाबाद, तो ये फिल्में कुछ खास कमाल नहीं कर पा रही थी, अव्वल नंबर। लेकिन ये जो फिल्म थी 1990 में आई दिल, इसने तो भैया उन्हें हर कॉलेज की शान बना दिया, हर लड़की के दिल की जान बना दिया। लेकिन इसके बावजूद आमिर खान बहुत हिट हो गए, उन्हें नहीं मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड इस फिल्म के लिए, बल्कि माधुरी दीक्षित को जरूर मिला बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इसी फिल्म के लिए। फिल्म फेयर अवार्ड की बात कर रहा हूँ मैं। तो एक काम करते हैं, इन गानों के साथ इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारी यादें आपको भी आ रही होंगी, हमें बताइएगा और सुनते जाइएगा रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर यादों का कारवां विद समर।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
2: Do take an hour off the world. Let unplugged melodies soothe your soul and spark your imagination. Musti Unplugged, the indie hour of pure musical bliss.
3: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
4: Check it out.
5: लीजिए एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं हूँ समर रेडियो मस्ती 24/7 लाइव और आप सुन रहे हैं यादों का कारवां। चलिए एक एक्शन थ्रिलर की बात कर लेते हैं। दो बैक टू बैक रोमांटिक फिल्मों की हमने बात की, लव स्टोरीज की बात की, तो हमने सोचा कि एक एक्शन थ्रिलर और कमाल के डायलॉग से भरपूर फिल्म की बात कर ली जाए। मैं बात कर रहा हूँ राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में बनी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म घायल की। सनी देओल, मीनाक्षी शेषाद्री, राज बब्बर, मौसमी चटर्जी, अमरीश पुरी, ओम पुरी जैसे कलाकारों ने अपनी अभिनय क्षमता से फिल्म को यादगार बना दिया। म्यूजिक इसमें बप्पी लाहिड़ी ने दिया था और गाने लिखे थे इंदिवर और अनजान साहब ने। इस फिल्म का वो गाना था सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा, ये एक बोलिवियन ग्रुप था उसने गाया था, लियोरेंडो से फ्यू, ये उससे इंस्पायर था। इंस्पायर क्या था, कॉपी था जी, बिल्कुल सेम टू सेम म्यूजिक था। और बप्पी दा इन दिनों में बहुत ज्यादा वेस्टर्न म्यूजिक से इंस्पायर्ड हो गए थे। ये 1981 का गाना था जिसे 1986 में मार्सिया फरेरा ने गाया और इसका एक और कवर वर्जन बनाया लंबाड़ा के नाम से जो कि बहुत हिट हुआ। तो कुल मिलाकर 1989 में तो ये हिट सॉन्ग्स में था, वर्ल्ड के हिट जो चार्ट बस्टर्स थे उनमें से एक गाना था। तो इसकी ट्यून घायल में इस गाने में ली गई। कुमार सानू, शब्बीर कुमार और आशा भोसले ने इस गाने को गाया और ये गाना दोनों वर्जन में बना, मतलब सैड वर्जन भी है इसका और हैप्पी वर्जन भी है। इस फिल्म के लिए सनी देओल को मिला उस साल का बेस्ट एक्टर का फिल्मफेयर अवार्ड और राजकुमार संतोषी को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। अच्छा, इस फिल्म का एक और गाना था जिसे एस जानकी ने गाया था। एस जानकी उस जमाने में बप्पीदा की फेवरेट सिंगर्स में से हुआ करती थी। उन्होंने एक गाना गाया था प्यासी जवानी है, ये मंगता है तो आ जा रसिया, नहीं तो मैं ये चलिए, जो इनकार मूवी का गाना था ना उससे एज इट इज ले लिया गया था, वैसे ही गाना वैसे ही म्यूजिक। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो बप्पी दा ने बड़े कॉपी किए इस वक्त गाने, नहीं लेकिन जो भी किया गाने कमाल के बना दिए, हमें सुनने को और सुनाने को कुछ नया दे दिया। तो चलिए इस फिल्म से और उस दौर के कुछ गानों से इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं।

0: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: To Shahi Maharani for the special treat.
3: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
4: Thank you, Shahi Maharani, for comforting and mouth-watering flavors.
3: Thank you.
5: Thank you.
4: Thank you.
2: Thank you.
6: We love you.
7: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffles City. Celebrate with 6 Shahi Signature Wet and Non-Veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply.
8: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ। जोश में
9: रहो। वेलकम बैक, नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत। समर है आपके साथ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। आप सुन रहे हैं यादों का कारवां। देखिए, आज जो हमारा कारवां है ये 1990 के साल से गुजर रहा है, 1990 से। तो उस फिल्म का भी जिक्र कर लेते हैं जिसके गाने ने अभी थोड़े दिन पहले रिविजिट किया था, और वो पिक्चर यहाँ अपने सिंगापुर में पिक्चराइज थी। उसका लेटर हाफ, सेकंड हाफ जो था वो यहीं पिक्चराइज था। एनी गेसेस? हाँ, आप पहचान गए। नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत, ये तम्मा लोगे जी। यू गेस इट राइट, बद्रीनाथ की दुल्हनिया में ये गाना रिविजिट हुआ था। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इसकी ओरिजिनल फिल्म की। जी, ये थी थानेदार। वैसे ये गाना भी एक अफ्रीकन ट्यून से इंस्पायर्ड है या कॉपीड है, अब मैं नहीं कहूंगा। बबीदा का म्यूजिक और अनुराधा पोडवाल के साथ बबीदा ने इस गाने को गाया। इंदिवर के बोल थे, सीधे दिल को तो छूता ही है, शरीर में करंट पैदा कर देता है, आप डांस करने की इच्छा लेकर फ्लोर पर आ जाते हैं। और आ जाना भी चाहिए भाई, जब दिल में मस्ती हो तो उसे दिखा भी देना चाहिए। और डांस करते वक्त ये नहीं सोचना चाहिए कि आपको देखकर कोई क्या कहेगा। डांस लाइक नोबडी इज वॉचिंग, बस डांस कीजिए मस्त बिंदास होकर। थानेदार में थानेदार कौन थे? नहीं, संजय दत्त तो थे ही, लेकिन वो फर्जी थानेदार थे। असली थानेदार थे जितेंद्र साहब। तो जितेंद्र साहब तो अचानक गायब हो जाते हैं जब एक गांव में उनकी पोस्टिंग होती है, लेकिन गांव में पहुंच जाता है एक क्रिमिनल संजय दत्त, और गांव वाले उन्हें ही मान लेते हैं थानेदार। फिल्म बड़ी मजेदार बन गई। माधुरी दीक्षित है इसमें संजय दत्त की हीरोइन, और बड़े अच्छे अच्छे गाने। उसमें एक गाना था जुल्मी सैया थानेदार,

इंस्पायर्ड थी या कॉपीड थी फिर से नहीं बोलूंगा। तो कुल मिलाकर ये गाना जो था, ये दोनों ही गाने हिट हो गए। राज एंड सिप्पी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म एक साउथ इंडियन मूवी थी, अनबुक्कू नान अदिमई, ये 1980 में आई थी, उस पर बेस्ड थी। फिल्म हिट हुई, 10 दिसंबर 1990 को रिलीज हुई और ये फिल्म चल पड़ी। तो जब फिल्म चल पड़ी तो इस कारवां को भी थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, क्या कहते हैं आप? रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव पर बने रहिए समर के साथ। इन नगमों के बाद फिर से करता हूँ आपसे मुलाकात।

0: 40% off. 40% joy alukas.
1: 40% off? Oh my god! Let's go!
2: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Joy Alukas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joy Alukas, the world's favorite jeweler.
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
4: मैं आरजे अनुपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
5: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
6: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

वेलकम बैक, मेरा नाम है समर, रेडियो मैसेज 24/7 लाइव पर एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर यादों का कारवां। ये जो साल था 1990, एक तरह से माधुरी दीक्षित का साल था ये कहना गलत नहीं होगा। एक से बढ़कर एक हिट फिल्में वो दे रही थी। ऐसे में एक और हिट फिल्म आई थी उनकी, नाम था उसका सैलाब। आदित्य पंचोली उनके साथ हीरो थे और कुलभूषण खरबंदा उनके साथ थे। दीपक बलराज विज का डायरेक्शन था, बप्पी दा का म्यूजिक था, जावेद अख्तर ने गाने लिखे थे। हमको आजकल है इंतजार, अनुपमा देश पांडे ने इस गाने को गाया और माधुरी दीक्षित ने जो कमाल का डांस किया ना साहब इस पर, वो तो मतलब क्या कहें उसके बारे में। खुद अमिताभ बच्चन साहब जब ये गाना शूट हो रहा था तो वहां थे और वो माधुरी को डांस करते हुए जैसे खो गए थे। वो कहते हैं जादू चल रहा था वहां पर। मैं समझ नहीं पाया कि हुआ क्या। जब कट हुआ तब उन्हें एहसास हुआ कि ये तो एक गाने की शूटिंग चल रही थी। खुद अमिताभ बच्चन मेस्मराइज हो गए थे इस गाने के डांस स्टेप्स से। तो ये कमाल था माधुरी का। अच्छा, ये जो फिल्म थी सैलाब, ये लिखी थी रीमा राकेश नाथ ने। राकेश नाथ से तो शायद आप वाकिफ हो। राकेश नाथ बड़े स्टार सेक्रेटरी कहे जाते थे और माधुरी दीक्षित के सेक्रेटरी हुआ करते थे उस जमाने में। रिक्कू नाम था उनका। फिल्म प्रोड्यूसर भी वो बाद में बने। और ये जो थी रीमा, इन्होंने कमाल की फिल्में लिखी। उनकी पत्नी है रीमा और इनका फिल्म खानदान से बड़ा लंबा चौड़ा रिश्ता रहा है। सप्रू साहब को शायद आप नहीं जानते हो, डीके सप्रू। बहुत सारी फिल्मों में विलेन भी रहे, कैरेक्टर आर्टिस्ट रहे। पाकीज़ा में वो देखे जा सकते हैं, हीर रांझा में वो थे, साहेब बीवी और गुलाम में भी थे, बहुत सारी फिल्मों में थे। अगर आप उनको सर्च करेंगे, उनकी फोटो को देखते ही आप पहचान जाएंगे। तो उनकी पुत्री है रीमा राकेश नाथ और इनके सुपुत्र को भी आप जानते होंगे, करण नाथ उनका नाम है। और जो 2002 में एक फिल्म आई थी ये दिल आशिकाना, उसके गाने बड़े हिट थे, उसके हीरो थे ये। तो कुल मिलाकर ये जो फिल्म थी इसकी कहानी थी वो बहुत ही जबरदस्त थी। फिल्म के गाने हिट हुए और जिस गाने का मैं जिक्र कर रहा था उसके लिए सरोज खान को बेस्ट कोरियोग्राफर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला उस साल। हमको आजकल है इंतजार, इसमें मछुआरन की ड्रेस पहनकर डांस कर रही हैं माधुरी दीक्षित, बहुत ही कमाल का। कभी मौका मिले तो आप फैन हो जाएंगे आप, मैं कह रहा हूँ, आप ये गाना देख लेंगे तो। तो चलिए, और इस फिल्म की एक और खास बात थी कि इसका जो बैकग्राउंड स्कोर था वो आदेश श्रीवास्तव ने दिया था, वो बहुत ही कमाल का है। फिल्म देखेंगे तो मजा आएगा। फिलहाल ये गाने सुन लेते हैं और कुछ यादों को ताजा कर लेते हैं। सुनते रहिए रेडियो मसी 24/7 लाइव पर यादों का कारवां विद समर।

0: देखो देखो वो आ गया।
1: सिंगापुर, जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

0: करेंगे यादों का कारवा विद समर, याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने। तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवा में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: वेलकम बैक, मेरा नाम है समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूँ लेकर यादों का कारवा। और आपके बगैर ये कारवा अधूरा है, आप हैं तो इस कारवा में रौनक है, रोशनी है। तो चलिए आज 1990 की कुछ फिल्मों की हम बात कर रहे हैं, उनमें से एक और फिल्म का मैं जिक्र करना चाहूंगा। अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित इस डेकेड के दो सबसे बड़े सितारों के रूप में उभर चुके थे। तो माधुरी दीक्षित की हमने बहुत बात कर ली, अब अनिल कपूर साहब की बात कर लेते हैं। डबल रोल में उनकी एक फिल्म आई, डबल रोल वही, एक सीधा साधा एक तेज तर्रार, सीता और गीता, राम और श्याम, बस उन्हीं फिल्मों का एक तरह से ये रीमेक थी। ये थी कृष्ण कन्हैया। माधुरी दीक्षित, शिल्पा शिरोडकर, श्रीराम लागू, कादर खान इस फिल्म में मेन लीड रोल में थे। राजेश रोशन का संगीत था, इंदिवर ने गाने लिखे थे, और आपको तो मालूम ही होगा ये फिल्म ऑफकोर्स राकेश रोशन ने डायरेक्ट की थी। राकेश रोशन की एक खास बात है, उनकी कोई भी फिल्म आप उठाकर देख लीजिए जो उन्होंने बनाई है, जो प्रोड्यूस की है या डायरेक्ट की है, उसका नाम के से शुरू होता है। चाहे वो काम चोर हो, कृष्ण कन्हैया हो, कोयला हो, खून भरी मांग हो, क्रिश हो, कोई मिल गया हो, ये तमाम फिल्में जो भी आप उनकी फिल्में देखेंगे वो सब के नाम से शुरू होती हैं। ऐसा कुछ उनका सुपरस्टिशन है कि के नाम से शुरू होंगी तो फिल्में हिट होंगी। अभी तक बस उनका ये जो है अंधविश्वास, इसे कह लीजिए या सुपरस्टिशन, ये अभी तक कामयाबी हुआ है। तो कृष्ण कन्हैया के गानों की बात कर लेते हैं। गाने ठीक ठाक थे, एक तो था सूट बूट में आया कन्हैया डांस दिखाने को। अच्छा, एक और गाना था जो काफी हिट हो गया था उस वक्त, वो था नितिन मुकेश और लता जी का गाया कृष्णा कृष्णा। फिर उसके अलावा एक और अलग तरह का गाना था, डिस्को बीट पर था, आपको देख के देख देख के रास गया ये जान, अमित कुमार और साधना सरगम की आवाज में था ये गाना, ये भी बहुत पॉपुलर हुआ। वैसे शिल्पा शिरोडकर वाले रोल के लिए पहले सोनू वालिया को अप्रोच किया गया था, पर उनसे ज्यादा तवज्जो दी गई शिल्पा शिरोडकर को और ये फिल्म उन्हें मिल गई। माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की केमिस्ट्री इस फिल्म के बाद और ज्यादा गहरी हो गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि गॉसिप वर्ल्ड में क्या चल रहा होगा। हाँ, उन सबसे इन दोनों को गुजरना पड़ा, लेकिन इनकी केमिस्ट्री पर इससे कोई असर नहीं पड़ा। तो चलिए फिलहाल तो उस दौर के कुछ गानों से इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं। कृष्ण कन्हैया देखिए आपने, कैसी लगी थी बताइएगा हमें।

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा,
2: हाँ जी जी,
1: आधा केजी मसूर दाल,
2: जी जी,
1: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
2: जी जी।
1: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
2: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
1: क्या जी?
2: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
1: वाह जी, क्या बात जी।
2: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

विजय दीनानाथ चौहान पूरा नाम है। दमदार आवाज के साथ ये दमदार डायलॉग है फिल्म अग्निपथ का। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत, मैं हूँ समर रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, नीलम, डैनी, रोहिणी हथंगड़ी के अभिनय से सजी थी ये फिल्म अग्निपथ। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक था इस फिल्म में और आनंद बख्शी ने गाने लिखे थे। एक डॉन की कहानी पर बेस्ड ये फिल्म मुगल आनंद के डायरेक्शन में बनी थी। फिल्म मुगल आनंद के लिए कहा जाता है कि उनसे बड़ा कोई स्क्रीन प्ले राइटर नहीं हुआ है। जिस तरह से वो फिल्म को लिखते थे, पूरी की पूरी कहानी दिखाई दे जाती थी। उन्हीं के डायरेक्शन में बनी थी हम भी, लेकिन वो एक फिल्म पूरी नहीं कर पाए थे जिसका नाम था 10, जिसे उनके इस दुनिया से जाने के बाद पूरा किया गया। चलिए फिलहाल हम बात कर रहे हैं इस फिल्म की जिसका नाम है अग्निपथ। अग्निपथ में अमिताभ बच्चन साहब की हीरोइन थी माधवी। माधवी के साथ अमिताभ बच्चन पहले भी काम कर चुके थे और वो फिल्म थी अंधा कानून। हालांकि इस फिल्म में कांचा चीना को कोई नहीं भूल सकता है। डैनी डेंजोंगपा ने ये रोल किया था और कांचा चीना तो जो नई वाली अग्निपथ आई थी उसमें भी बहुत कमाल के थे, वो थे संजय दत्त। और उसमें जो विजय दीनानाथ चौहान का रोल किया था वो किया था ऋतिक रोशन ने। फिलहाल तो ये जो फिल्म थी अग्निपथ, इसका जिक्र कर लेते हैं। इस फिल्म में एक पोयम है, अग्निपथ अग्निपथ, ये डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की पोयम है जिसे यूज किया गया था। आलोकनाथ जो छोटे अमिताभ बच्चन होते हैं, जो विजय होता है जब छोटा बचपन में, तो उसको सुनाते हुए जाते हैं। अब ये बहुत हिट है और लोग इसे सुनना चाहते हैं। इसके एक एक शब्द में मोटिवेशन छिपा है। बहुत ही कमाल की कविता है, बहुत ही जबरदस्त पोयम है। कभी सुनने का मौका मिले तो जरूर सुनिएगा। क्या मैं सुना दूं? चलिए, अब आप इतनी जिद कर रहे हैं तो कुछ लाइन सुना देता हूं। मैं सारी सुना दूं? चलिए सुन लीजिए। कि वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक छत्र छाह भी मांग मत, मांग मत, मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। जोश आया? हम तो कहते हैं भैया जोश में रहो, मस्ती सुनेंगे तो जोश में रहेंगे। फिलहाल इस फिल्म का जिक्र कर लेते हैं। इसमें एक गाना था, गणपति अपने गांव चले। ये जो गणपति महोत्सव होता है महाराष्ट्र में और खासकर अब तो पूरे हिंदुस्तान में होने लग गया और हिंदुस्तान के बाहर भी होने लग गया है, तो उसका ही एक सीन था। सुदेश भोंसले और कविता कृष्णमूर्ति ने इसमें अपनी आवाज दी थी और ये गाना अभी भी गणेश महोत्सव पर बजने वाले टॉप गानों में से एक है। जब गणेश जी का विसर्जन होता है तो ये गाना अक्सर सुनाई दे जाता है, मुंबई में तो खासतौर से। वहीं इस फिल्म का एक और गाना था, नीलम और मिथुन के बीच नोकझोंक होती है, बड़ा इंटरेस्टिंग गाना है, आई एम ए कृष्णा अय्यर अय्या में। एसपी बाला सुब्रमण्यम ने इस गाने को गाया और ये गाना जितना सुनने में बढ़िया लगता है उतना ही देखने में भी कमाल का है। बड़ा मजा आता है इस गाने को देखकर। ये जो गाना है इसमें मिथुन चक्रवर्ती एक साउथ इंडियन बने हैं और वही ड्रेस पहनकर, नारियल पानी वाले हैं, वही ड्रेस पहनकर अमिताभ बच्चन साहब को एक बार बचाते हैं वो, और वही लुंगी उंगी पहनकर इस गाने में दिखाई देते हैं, डांस करते हैं। अमिताभ बच्चन को नेशनल बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था इस फिल्म के लिए और मिथुन चक्रवर्ती को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था इसी फिल्म के लिए। रोहिणी हथंगड़ी को भी बेस्ट फीमेल सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था इस फिल्म के लिए। ये फिल्म बड़ी कमाल की थी, बहुत सारी यादें हैं इसके साथ। अमिताभ बच्चन साहब ने इसमें एक अलग तरह की आवाज निकाली थी कि ये जो मेरा कैरेक्टर है विजय दीनानाथ चौहान का, उसके लिए मैं ये आवाज दूंगा। सुनने में ये आता है कि उस वक्त लोगों ने कहा कि यार इस आवाज के साथ ये फिल्म जम नहीं रही है, ये तुमने क्या किया यार, तो इसे रीडब किया गया उनकी ओरिजिनल आवाज में। लेकिन बाद में उसे उस आवाज के साथ जो उनकी ओरिजिनल आवाज है उसके साथ रिलीज नहीं किया गया। तो कुल मिलाकर बहुत सारी कहानियां इस फिल्म के साथ। ये फिल्म है बड़ी कमाल की और ये यादें तो प्राइसलेस। तो आइए इन यादों के साथ इस यादों के कारवां को आगे बढ़ाते हैं। सुनते रहिए रेडियो मसी 24/7 लाइव सिंगापुर ओनली हिंदी रेडियो, नाउ ऑन द गो।

मस्ती करते तो मेरे का मजा करते, मेरा साउथ का मजा करती है। देख आज मैं लूंगी उठक का तुमको डिस्को नारियल दिखाएगी।

0: अंतरजाति।
1: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
2: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
4: 40% off, 40% joy Alukas,
5: 40% off, oh my god, let's go,
6: offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge, joy Alukas laya hai the biggest jewelry sale, flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry and 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joy Alukas, the world's favorite jeweler.

वेलकम बैक, मैं हूं समर रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। जाने का वक्त, और जाने से पहले आपसे करना चाहता हूं कुछ और बातें। एक और फिल्म का जिक्र करना चाहूंगा जिसका मैं जिक्र करना भूल गया, लेकिन क्योंकि ये फिल्म बहुत आखिर में आई थी उस साल की, तो मैंने सोचा कि इसका जिक्र भी आखिर में कर लेते हैं। ये फिल्म है साजन की। जी, साजन और काजल की लव स्टोरी है। कुछ समझ आया आपको? दीपक शिवदासानी का डायरेक्शन है और जावेद सिद्दीकी ने इसका स्क्रीन प्ले लिखा। म्यूजिक इसका बड़ा हिट हुआ था, आनंद मिलिंद का म्यूजिक था। कुछ अंदाजा लगा पा रहे हैं कि नहीं आप? चलिए, जब मैं इस गाने का जिक्र करूंगा तो आप समझ जाएंगे। चांदनी रात है, तू मेरे साथ है। और एक और गाना था, कैसा लगता है, अच्छा लगता है, या फिर वो वाला, एक चंचल शोख हसीना मेरे ख्वाबों में आए, या फिर टप टप टप टपोरी। कमाल के गाने। और मुझे जो पसंद है वो, मांग तेरी सजा दूं मैं, और वो वाला, हर कसम से बड़ी है कसम प्यार की। इस फिल्म के गाने लिखे थे समीर साहब ने, और एक नया सिंगर इंडस्ट्री को मिल गया था, वो थे अभिजीत भट्टाचार्य। कमाल के गाने, उनके हर गाना इतना जबरदस्त था कि सीधे दिल में उतर गया, और वो आज तक दिल में ही है। जैसे इन गानों को सुनेंगे आप गुनगुनाने लगेंगे। ये है यादों की ताकत। बागी फिल्म सलमान खान के लिए भी दूसरी बड़ी हिट फिल्म साबित हुई, और इस तरह से सलमान खान और आमिर खान का करियर लगभग एक ही टाइम पर परवाज भरने लगा था। सलमान खान के साथ उनकी हीरोइन थी नगमा, और नगमा की ये पहली फिल्म थी, डेब्यू फिल्म थी, बागी और रेबल फॉर लव। अब देखिए, जिसका डेब्यू इतना कमाल का हो, उसे हिट तो होना ही था। 2000 में उन्होंने एक बुटीक भी खोला था नगमास, वो बहुत हिट हुआ था, लेकिन क्योंकि उनके फादर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, 2005 में उनकी डेथ भी हो गई, तो नगमा ने फिल्मों से तो दूरी बनाई ली थी, और ये बुटीक भी अब उनका बंद हो गया था। आर्ट ऑफ लिविंग सिखा रही है आजकल वो, तो चलिए हम भी कुछ आर्ट सीख लेते हैं, और इन नगमों के साथ इस यादों के कारवां को आगे बढ़ाते हैं। आपसे अगली मुलाकात करूंगा, कुछ और यादें लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए सुनते रहिएगा रेडियो मसी 24/7 लाइव, सिंगापुर्स ओनली हिंदी रेडियो, नाउ ऑन द गो। फिर मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले वही बात, अपना ख्याल रखिएगा, अपने अपनों का ख्याल रखिएगा, और अपने आसपास की जो चीजें और लोग दिख रहे हैं ना, इनका भी ख्याल रखिएगा। मिलता हूं आपसे बहुत जल्द। टेक केयर।

0: आरजे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
2: चेक इट

This bass is heavy. Jumbo.

0: आएंगे
1: न करण अर्जुन आएंगे न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे
2: Monday Blues, not on our watch. Wake up to world news, fresh updates aur thoda Bollywood ka maza bhi. Make your Mondays matter with the morning show with Renuka, 7 a.m. onwards.
3: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
4: Check it out. Josh Mehra.
1: जब हमारा कोई शो होता है सुपर हिट तो आप कहते हैं और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं। प्रेजेंटिंग द एनकोर ऑफ योर फेवरेट शोज, अनदर डे अनदर टाइम फॉर योर लिसनिंग प्लेजर ओनली, बिकॉज सुपर हिट्स डिजर्व अ रिपीट। चेक आउट द एनकोर शो स्केड्यूल ऑन आवर एप मेन्यू।
3: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक

0: Not all music is loud. Some songs just sneak in. What makes you smile? Hum along and feel good. Welcome to Masti Unplugged. Your indie acoustic playground on Radio Masti 24/7.
1: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें,
2: I love you, रसना।
1: समोसा पैटीज, फूटी, लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, Masti 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 AM onwards only on Radio Masti 24/7 Live.
3: मेरे करण अर्जुन आएंगे
0: ना, करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
1: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats.

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
2: चेक इट आउट.

0: आएंगे
1: न करण अर्जुन आएंगे न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: दस का बीस, दस का बीस, दस का बीस, दस।
1: अरे अरे अब बस दस से दिल कहाँ भरेगा। मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार।
3: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
1: Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musty Top 20, only on Radio Musty 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009. Every voice begins with a dream, a note that dares to fly. From Singapore to the world, Music Beyond Boundaries Season 4. Watch Music Beyond Boundaries only on Musty AVI, powered by Musty Media Network Singapore. For show timing and more, stay tuned to Radio Musty 24/7 Live. One world, one sound, one love. Music Beyond Boundaries, beyond borders, beyond time.

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
2: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
3: To Shahi Maharani for the special treat.
4: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
5: Thank you Shahi Maharani for comforting and mouth-watering flavors.
4: Thank you.
6: Thank you.
5: Thank you.
3: Thank you. We love you.
7: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature Veg and Non-Veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply.
8: मेरे करण अर्जुन आएंगे
0: ना, करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

0: फ्लाइट टिकट खरीदे, दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ। जोश में रहो।
2: योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज ओपन। फ्रेशली ब्रूड बीट्स

0: पहुंचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.
2: Check it out.

0: आएंगे
1: ना करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, फिलहाल तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे।
2: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है, ये रात हमें ख्याल किसका है, ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है,
3: मुझे चांद पे ले चलो,
2: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
3: रात अकेली है। जोश में रहो।
4: Some shows don't just play, they stay with you. And when our listeners ask for more, we bring them back. Encore shows by popular demand. Relive the music, the moments, the magic. Only on Radio Masti 24/7. Check the app menu for Encore show timings.
5: Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore.

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: जिसकी याद सताए जनाब, अकेलापन रात का तो हम है ना।
1: रात अकेली है।
0: रोज रात रेडियो मस्ती पर 11 बजे से।
2: कभी मेरे साथ कोई रात गुजार।
3: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
4: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
3: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
4: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
3: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।
5: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
6: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10 का 20।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musty Top 20, only on Radio Musty 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.
3: Josh Mehra. Aye, hum nawa, baithiye, jaane ja. Hello and good evening. जी हाँ, रेडियो मस्ती 24/7 पर आ चुकी है रेणुका। क्या लेके आई है? वाल लेके तो आई है वही वाला शो जो कि आपका पसंदीदा शो है। जी हाँ, फ्राइडे इवनिंग है तो हंगामा तो होना चाहिए, और हंगामा करने के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि एक ऐसी आवाज और एक ऐसा शो जो कि मिलके कंट्रोवर्सीज पैदा करे, मजा आए, लड़ाइयां हो, बोले लोग कि यार क्या चल रहा है, क्या होगा गाना नंबर 10, कौन सा होगा गाना नंबर 15, कौन सा होगा गाना नंबर 1। वेल वी गोना ऑब्वियसली गो डाउन 20 to 1, और 20 to 1 करते करते बीच बीच में हम कुछ अपने पुराने साथियों से भी मिलेंगे। जी हाँ, पुराने साथी यानी कि वो वाले जो कि हमें बीच राह में छोड़ के चले गए लेकिन आज भी हमें याद आते हैं। Those will be the Bollywood flashback and the Bollywood top song of the hour, of course, जो आप सुनते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर गप्पे शप्पे चलेंगी। जी हाँ, मैं यहाँ पर बिल्कुल आपके लिए at your service पहुँच चुकी हूँ, और गप्पो शप्पो का मतलब ये होता है कि बीच बीच में gossip। जी हाँ, Bollywood की खास gossip जो कि आपको पता ही है कि मेरे पास भरमार होती है, right? So on Radio Masti, guys, it's just a few minutes past 5 p.m. and यहाँ पर टाइम है मस्ती टॉप चार्ट्स का। दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर स्पाइसी एंड दे आर हैपनिंग। जॉइन अस ऑन मस्ती टॉप 20। अब आखिरी फ्राइडे है मई का, तो चलिए आखिरी गाना मतलब कि नंबर 20 पर कौन सा है वो भी बता देते हैं।
4: यही तो, हाँ यही तो खासियत है आपकी।
3: इनकी खासियत भी ये है कि ये 12 से लेके सीधा 20 पर खिसके हैं। अब पूछिए भाई, कहने को तो बहुत ही बढ़िया। इनके पास हमारे धर्मा प्रोडक्शंस हैं, जी हाँ, जो कि इनके प्रोड्यूसर हैं। इस फिल्म का नाम है चांद मेरा दिल, और रिलीज हो चुकी है फिल्मों में हमारे थिएटर पे, और बहुत सारी बातें सुनने में आ रही है इसके बारे में। आपने देखी है क्या चांद मेरा दिल? अगर देखी है तो 9151896 3। आई एम डेस्परेट टू नो योर रिव्यू। ऑलराइट, दिस इज रेडियो मस्ती 24/7 एंड ऑफ कोर्स इट्स अ मस्ती टॉप चार्ट्स विद रेणुका। स्टे ट्यून्ड टिल 8 p.m.
5: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 20।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: जब हमारा कोई शो होता है सुपर हिट तो आप कहते हैं और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं। Presenting the encore of your favorite shows, another day, another time, for your listening pleasure only. Because super hits deserve a repeat. Check out the encore show schedule on our app menu.
3: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
4: Bollywood Flashback.

0: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: All right, हर किसी को मिले ना मिले आपको जरूर मिल जाता है यहाँ पर पूरा का पूरा माल जिसे कहते हैं रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती टॉप चार्ट्स का धमाल किसके साथ
2: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल
1: बड़े बड़े धुरंधर आए और चले गए जी हाँ पूरे के पूरे 20 के 20 गाने लूट रहे थे एक ही फिल्म से साइड ए साइड बी जिसे मैं कहती थी लेकिन आज के दिन में कितने रह गए हैं रेडियो मस्ती 24/7 पर जी हाँ दिस इज रेणुका विद यू आपको जोश में रखने के लिए फ्राइडे इवनिंग हम लेकर आते हैं मस्ती टॉप चार्ट्स और मस्ती टॉप चार्ट्स पे अगला गाना जो हमारा है वो है एक ऐसी फिल्म से जो कि रिलीज हो चुकी है जी हाँ रिलीज हो गई थी वो भी 2025 के टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लेकिन हमारे और आपके देखने के लिए रिलीज होने वाली है 5 जून को बात कर रहे हैं हम बंदर जी हम मंकी की दिस इज एक्चुअली अ 2025 इंडियन क्राइम थ्रिलर फिल्म जिसको डायरेक्ट किया है अनुराग कश्यप ने और प्रोड्यूसर हैं निखिल द्विवेदी जी हाँ अब इस फिल्म को लिखा और उसके बाद रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर होते होते ये फिल्म में उन्होंने बॉबी टेवल को लीड रोल पे रखा और सानिया मल्होत्रा सपना पाबी सबा आजाद इंद्रजीत सुकुमारन एंड राजबी शेट्टी अलॉन्ग विद जितेंद्र जोशी ये सारे के सारे अब बेसिकली एक फिल्म स्टार के बारे में है जो थोड़े से बड़े हो रहे हैं उम्र में हु गेट्स अक्यूज्ड ऑफ रेप बाय हिज एक्स गर्लफ्रेंड जी हाँ दैट इज व्हाट द स्टोरी इज ऑल अबाउट अब इसमें ऑफ कोर्स समीर मेहरा नाम है हमारे अभय देओल का और ये फिल्म हाल ही में आने वाली है सुनने में तो यही आ रहा है कि भाई बहुत मजा आएगा तभी तो इस गाने का नाम है और ये पिछले हफ्ते 15 नंबर पे था तो इसको ज्यादा मजा नहीं आ रहा होगा हमारे साथ ऑन रेडियो मस्ती गाइस दैट इज गोइंग टू प्ले ऑन नंबर 19 फॉलोड बाय A song which has actually flipped जी हाँ and reached number 18 ये था number 16 पर पिछले हफ्ते Radio Masti 24/7 पर more gossip coming right across these two songs stay with me guys this is Renuka with you Masti Top Charts
0: trending song number 19

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
2: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
3: I love you, रसना।
2: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 AM onwards, only on Radio Mercy 24/7 Live.
4: It's time for
5: musty song of the hour.
6: Song of the hour.

0: गुलाबी ये प्याले ऐसे दे हवाले, क्या है ये, क्या है ये गाना, ओ माय गॉड, जलता है जिया मेरा भीगी भीगी रातों में. हाउ सजेस्टिव इज दैट गाइस. गुड इवनिंग एंड वेलकम वंस अगेन, इट इज रेणुका विद यू, रेडियो मस्ती 24/7 मस्ती टॉप चार्ट्स. From rocking the charts to ruling the weekly countdown, join us on Masti Top 20. अब ये देखो यार कि अभी तक जो आपने गाने सुने हैं ना, उनकी हालत ये हुई है कि सारे के सारे गिर गिर के खिसक खिसक के नीचे लुढ़क गए हैं. नंबर 20 पर जो आज आपने सुना, खासियत उसकी खासियत ये है कि सबसे ज्यादा लुढ़का है, ठीक है, 12 से 20 एंड ऑफ कोर्स द रेस्ट ऑफ देम एज वेल. लेकिन अब अगला गाना आने वाला है 17 जो गाना है ना भाई साहब, उसके बारे में तो आप पूछो ही मत, ना मुझसे पूछो ही मत. मतलब 17 नंबर वाला गाना है फ्रॉम द फिल्म है जवानी तो इश्क होना है. एंड ऑफ कोर्स देयर हैव बीन सेवरल बिजनेस बेसलेस एलिगेशंस जो कि बने हैं इस फिल्म के अगेंस्ट बाय वाशु भगनानी. मतलब एक स्मेयर कैंपेन ड्रिवन है. अब मुझे ये लगता है कि ये सारी मार्केटिंग का सीन है, राइट, बिकॉज जो मिस्टर भगनानी के साथ इस फिल्म का रिलेशनशिप है, वेल एक्चुअली इट डेट्स बैक टू 1995 जहां पर उनको 50% पार्टनरशिप और प्रोड्यूसर क्रेडिट दिया गया था ऑन अ प्रोजेक्ट जिसका सारा ग्राउंड वर्क हो चुका था. गुली नंबर 1 की बात कर रही हूं मैं, और वो फिल्म जाकर बनी एक मैसिव बॉक्स ऑफिस हिट, और उसकी वजह से मिस्टर भगनानी जो है किक स्टार्ट हो गए इंडस्ट्री में. अब उसके बाद भी बड़े सारे साल हो गए, लेकिन यहां पर कोई ऐसी बात नहीं, उन्होंने कॉन्ट्रोवर्सी होने नहीं दी. भाई अब हाल ही में मिस्टर भगनानी जो है ना, उन्होंने एक केस भी फाइल कर दिया है, मतलब मुंबई से बहुत दूर फाइल किया है, लेकिन लीगल एक्शन इनकी फिल्म के अगेंस्ट. अब बड़े परेशान है भैया हमारे जो डेविड धवन है और कौन कौन है, क्योंकि 5 जून को ये वाली फिल्म रिलीज होने वाली है, और फिल्म के बारे में गंदी गंदी बातें बोलने से पहले दूसरे को सोचना तो चाहिए भाई, कितना नुकसान हो सकता है. जाओ हमारा क्या जा रहा है, रेडियो मस्ती 24/7 पर गॉसिप चलती रहेगी एंड ऑफ कोर्स गाने भी टॉप चार्ट्स में. आज का गाना नंबर 1 कौन सा होगा, सोचना शुरू करो, टाइम है बट सोचना शुरू करो.
1: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 17.

0: ये तो होता ही है, अगर जवानी है तो इश्क होना है, क्या बात है, और वो जवानी ही कहाँ जिसमें इश्क नहीं हुआ। वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 पर।
1: दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर स्पाइसी एंड दे आर हैपनिंग। जॉइन अस ऑन मस्ती टॉप 20।
0: अब जॉइन तो आप कर ही चुके हो, इसीलिए Might as well stay back with me, my darlings. जी हाँ, अगला गाना हमारे यहाँ पर गाना नंबर 16 है। गाना नंबर 16 जो आप सुनेंगे, well, उसको रिलीज किया गया था अप्रैल के महीने में। बड़ा ही highly anticipated successor track है, और वो भी जुबिन नौटियाल की आवाज में। Well, let me tell you guys that the connection. जी हाँ, फैंस जो है ना, इस गाने को कंप्लीट इमोशनल साइकिल कहते हैं। एक था हम नवा मेरे 2018 की एक बढ़िया सा गाना, which was talking about the initial pain of unrequited love, and अब ये जो नया वाला है मेरे हमनवा 2026 का, it echoes it with louder, deeper heartbreak. जी हाँ, 2026 का जो track है, it is a collaboration featuring Jubin Nautiyal, The Rish and Rocky Khanna. और आप सोच सकते हैं कि गाना उफ, आपको अगर मैं नहीं सुनाऊंगी तो आप सोचोगे किसके बारे में बात कर रही है।
2: तू दिल है मेरा, तू घर है।
0: और ये एक ऐसा गाना है जो कि उठा है अपनी जिंदगी में, आफ्टर ऑल लव ऑलवेज स्ट्राइक्स अ कॉर्ड। What a lovely voice this guy has, right? So, आपको पता है इस गाने की प्रमोशन में क्या किया था उन्होंने, बड़ा ही अलग तरीके से टी सीरीज एंड ऑफ कोर्स जुबिन जो है, इन्होंने मैसिव जैम विद जुबिन, जी हाँ, रॉ वॉइस सिंगिंग कॉन्टेस्ट शुरू किया था, जहां पर जो फैंस हैं दे कुड रिकॉर्ड 3 मिनट का गाना, अकोस्टिक कवर ऑफ द सॉन्ग यूजिंग ओनली रॉ इंस्ट्रूमेंट्स लाइक गिटार्स और पियानोज, एंड फिर ओए होए होए दे कुड एक्चुअली सिंग अलोंग विद जुबिन एज वेल। नॉट बैड, हाँ, दिस इज क्वाइट अमेजिंग। तो चलिए ये वाला गाना सुनते हैं, और उसके बाद जो नंबर 15 पर आएगा वो तो बस वाओ ही है। वाओ, सुनते हैं बैक टू बैक ये गाने। Welcome once again, Renuka with you, Musty Top Charts.
3: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever-buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
4: Check it out.
3: Trending song, number 16.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
3: Good morning!
4: Shahi Maharani for the special treat.
5: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
6: Thank you Shahi Maharani for comforting and mouth-watering flavors.
5: Thank you.
7: Thank you.
6: Thank you.
4: Thank you. We love you.
0: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature wet and non-veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June.

0: हाल ये हो गया हमारे दिल का कि भैया एक फिल्म जो हमें देखने का मन करता है आते ही वो किसी और भाषा में भी आए तो हम ना समझ लोगों को, जी हाँ जो हिंदी स्पीकिंग है उनको भी लगता है यार चलना, देखकर आते हैं जितनी समझ आएगी आएगी, चलना यार रहा नहीं जा रहा।
1: From rocking the charts to ruling the weekly countdown, join us on Masti Top 20.
0: You tell me, is there any such film, guys, that you just cannot wait to watch? For me, it is Drishyam. जी हाँ, Drishyam 3 का box office collection. आप पूछिए मत. मोहनलाल की much awaited crime thriller. जी हाँ, massive, massive hit जिसे कहते हैं. इसे direct किया जीतू जोसेफ ने and इसको release किया गया था May 21st को and it has crossed the prestigious 200 crore mark worldwide. पहले ही हफ्ते में, जी हाँ, पहले ही हफ्ते में. So it has emerged as one of the biggest Malayalam films of the year. इसमें क्या हैरानी की बात है, मतलब या तो हमें बड़ी हैरानी हो, कोई ऐसी हैरानी टाइप हुई नहीं है सीरियसली स्पीकिंग, क्योंकि हमें लग ही रहा था कि ये जो हमारे मोहनलाल जी हैं ये जब वापस आते हैं विद द आइकॉनिक जॉर्ज कुट्टी टाइप बनकर, तो भाई उसके बाद में नोबडी कैन स्टॉप हिम फ्रॉम रीचिंग राइट अप देयर. आई लव द क्लाइमैक्स ऑफ दृश्यम ऑलवेज. व्हाट अबाउट यू गाइस, डू यू लाइक इट और डू यू लाइक इट?

0: रही।
1: भाई तू इतना दुखी आदमी क्यों है? वैसे तो तेरे को इसीलिए पीछे भेजा गया है क्योंकि तुझे प्यार पे एतबार नहीं, नंबर 9 पे चल रहा था तू और 14 पे आके मुंह के बल गिरा है। खैर चलो, अपनी अपनी जिंदगी है, अपनी अपनी किस्मत है। रेडियो मस्ती 24/7 पर गाना नंबर 1, जी हाँ कौन सा होगा बताइए बताइए। इफ यू कैन गेस दैट टुडे, आई एम टेलिंग यू, यू गाइस आर गोइंग टू बी गेटिंग अ बिग चुम्मा फ्रॉम मी, ऑलराइट? सो वेल, नॉट लिटरली बट या लिटरली, ओके, गेट इट? ऑलराइट, सी यू नेक्स्ट आवर गाइस, दिस इज रेनू कव।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: 40% off, 40% joy alukas,
4: 40% off, oh my god, let's go,
5: offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Joya Lucas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joya Lucas, the world's favorite jeweler.
6: Trending song. Number 14.

0: They are fresh. They are hot. They are happening. From rocking the charts to ruling the countdown. Yes, Musty Top 20. Pumping up Friday evenings, 5 p.m. onwards. The latest and the brightest. The week's top chart busters. Musty Top 20. Only on Radio Musty 24/7 Live. The only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.
1: क्या मिलता है लोगों को गंदी गंदी बातें करके, क्या मिलता है लोगों को सामने वाले को क्रिटिसाइज करके, क्या मिलता है लोगों को दूसरे के दुख पे नमक डाल के, बताइए। दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर स्पाइसी एंड दे आर हैपनिंग। जॉइन अस ऑन मस्ती टॉप 20। हॉट स्पाइसी, जी हाँ, मैं बिल्कुल यहाँ पहुंच चुकी हूँ। अरे मेरी बात नहीं हो रही, गानों की हो रही थी। चलो कोई ना, रेडियो मस्ती 24/7। जी हाँ बिल्कुल, फ्राइडे शाम है 6 बजे के उस पार, मैं आपके साथ रेनुका। और अगर आप ऑनकोर सुन रहे हैं तो वेल ये संडे शाम है और 6 बजने के उस पार मैं आपके साथ रेनुका। जी हाँ, वाओ, व्हाट अ कोइंसिडेंस। अच्छा ऐसा है कि मैं बात कर रही थी कि भाई कुछ लोग जब से सोशल मीडिया मिला ना, उन्हें लगा है कि उनको तो ना बिल्कुल हक मिल गया है ट्रोल करने का लोगों को। सो हाल ही में इस ट्रोलिंग के उस पार कौन है? शमिता शेट्टी। जी हाँ, जो बहन है हमारी शिल्पा शेट्टी जी की। तो वेल शी स्ट्रॉन्गली रिएक्टेड कि भाई ये ऑनलाइन इनको जो ट्रोल कर रहा है कि तू 47 ईयर ओल्ड हो गई है, हैं तेरी शादी नहीं हुई, अब पूछो तुम्हारा मतलब का क्या जा रहा है, बताओ तुम सिंगल क्यों हो, मतलब व्हाट द हेल, राइट? सो शी इज लाइक स्लैमिंग द माइंडसेट। शी इज सेइंग क्या है एक औरत को उसके मैरिटल स्टेटस के बेसिस पर जज करने वाले, तुम्हें क्या मिला मेरे साथ ऐसे बात करके। उफ, बहुत ही जबरदस्त सा जवाब एंड आई एम प्रीटी इंप्रेस्ड विद दिस गर्ल। Quite a pretty gana, isn't it? This is ruling on number 13. Pichle hafte ye tha number 18 par. Do you guys think it's rightly gone up the ladder? Ya aapko lagta hai ye gana itna mast nahi hai? Bataiye, bataiye mujhe. Radio Musti 24/7 par intezar kar rahi hu main aapke messages ka on 91518963. Good evening.
2: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app. Trending song, number 13.

0: भाई तुझे इतनी टेंशन है उसके अकेले जाने से, तो तू साथ चला जा। गुड इवनिंग, दिस इज रेडियो मस्ती 24/7 फुल ऑन मस्ती। जी हाँ, ऑन अ फ्राइडे इवनिंग कम्स ओनली विद मस्ती टॉप चार्ट।
1: दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर स्पाइसी एंड दे आर हैपनिंग। जॉइन अस ऑन मस्ती टॉप 20।
0: आइए आइए, आप सोच रहे हैं कि भाई ये कहां से कहां तक गाने आ चुके हैं, तो वेल लेट मी टेल यू, अगला गाना नंबर 12 होने वाला है। तो यस, वी हैव ऑलरेडी गॉन फ्रॉम नंबर 20, 19, 18, 17 करते करते 12 पर आ पहुंचे, और जो 12 नंबर पर है वो पिछले हफ्ते 13 नंबर पर था। मतलब एक सीढ़ी सही, लेकिन फिर भी चढ़ा तो है ना, दैट इज व्हाट मैटर्स। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं आपको कि हमें अपनी पर्सनैलिटी एक दिन पहले से, मतलब कल से आज बेहतर बनानी है। उफ, टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर फ्राइडे इवनिंग गाइज, बट यू नो व्हाट, लाइफ इज सच। ये मैं नहीं कह रही हूं, कह रहे हैं हमारे टाइगर श्रॉफ के डैडी, दैट इज जैकी श्रॉफ जी, कि भाई 14 में, दैट मींस 2014 में टाइगर श्रॉफ ने डेब्यू किया था, एंड ऑफ कोर्स उस समय ही बिकेम सॉलिड सॉलिड लॉयल फैन बेस, ये वो इंस्पिरेशन, अपनी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग, फिटनेस जर्नी, फलाना ढमकाना, ये वो। अब क्या हो गया भाई, एक भी हिट नहीं आ रही है, क्या बात है, चार चार फ्लॉप लेके बैठ गया भाई, हुआ क्या? तो जैकी ने ये कहा, देखो बड़े अच्छे डैडी हैं, बाय गॉड, मैंने भी बहुत जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स देखे हैं अपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, मुझे चिंता नहीं है टाइगर की जर्नी इन बॉलीवुड, क्योंकि मुझे लगता है डेस्टिनी फिल्मों की होती है, इंसानों की नहीं, और तुम्हारे एक एक्टर के हाथ में नहीं, उसमें बहुत कुछ होता है, राइट? एंड टाइगर विल बी ओके बिकॉज ही कीप्स वर्किंग हार्ड, और हम एक्टर्स हैं, वी हैव टू गो थ्रू एवरीथिंग, और टाइगर को ये बात पता है। सो वेल, सिंसियरली रहेगा अगर अपने काम में डूबा हुआ, तो भी डेफिनेटली आगे बढ़कर कहीं ना कहीं पहुंचेगा। हाय राम, तालियां। ऐसे डैडीज हो तो बच्चे कितने इनकरेज होता आपने, नहीं? And that is gun number 12 coming on Radio Masti 24/7 followed by another beautiful track. Alright, that is Chhap Tilak and followed by
2: Jinni Soni Lagdi Hai Mainu Kise Hor Na Lagge Lagge
0: 14 से 11, जी हाँ, दैट इज वेयर दिस गाना हैज रीच्ड। पति पत्नी और वो दो, मैंने जाके देखी ये फिल्म, आपने देखी क्या, बताइएगा मुझे।
3: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
4: Check it out.
3: Trending song number 12.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाजी क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 11।

0: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: आज मेरे से अभी अभी पूछ रही है ये लड़की कि भाई धुरंधर के गाने नहीं चल रहे आज. आई नो यू गाइज आर ऑल्सो थिंकिंग व्हाट आई एम थिंकिंग. आज के हमारे शो पे अभी तक धुरंधर का एक गाना चला है. लाइक सीरियसली गाइज.
3: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल.
2: आई नो आपको ये बात पता है कि इस घंटे मतलब इस घंटे इन द सेंस कि इस शो पर एक और गाना तो गहरा हुआ तो चलेगा ही चलेगा राइट. लेकिन कब चलेगा इज द क्वेश्चन. रेडियो मस्ती 24/7 चल रहा है मस्ती टॉप चार्ट्स रेणुका के साथ. जी हाँ इस टाइम पर हम बात कर रहे हैं उन रिश्तों की जो कि इधर उधर चले जाते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में ग्रो करते हैं. नो आई डोंट मीन फिजिकली बिकॉज उनमें से एक इंसान हॉरिजॉन्टली ग्रो किया एक इंसान वर्टिकली बट दैट डजंट मीन व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. आई एम टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस. क्योंकि जब आप किसी एक इंसान के साथ होते हैं तो आपको लगता है उफ इट्स मैजिक. और वो मैजिक कहाँ गायब हो जाता है क्योंकि well, you have to part sometimes over scandalous circumstances. जी हाँ मतलब अब आप ये सोचिए कि scandalous circumstances. बात कर रही हूँ मैं पूजा भट्ट और साथ ही में हमारे बॉबी डियोल की. भाई अंतरा जी का फेवरेट गाना कैसे हटाएंगे हम. Coming on gaana number 10. Ji haan, it used to be 12 by the way, so it has also grown up the ladder. This is the next gaana coming from Dhurandhar. Lekin back to the relationship where 90s mein definitely ye dono ke dono dating shating kar rahe the. Jab Bobby Deol ka official debut nahi hua tha. Lekin uske baad पूजा भट्ट जो कि एक बहुत ही बड़ी बड़ी फैमिली को बिलोंग करती थी. वेल शी सेड दैट दे सिंपली ग्रू इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड सेड इट वर्क्ड टिल इट डिडंट वर्क. और बस उसके बाद डिटेल्स में क्या जाना यार छोड़ो परे सानू की है ना. हमें तो ये लेना देना है भैया कि आज लड़का काम अच्छा कर रहा है और अच्छी लड़की के साथ उसकी शादी हुई पड़ी. तो पूजा भट्ट तुसी कार च बैठो ना जी ना तुसी आगे ना आओ. ओके जस्ट ग्रो इन योर डायरेक्शन. गुड इवनिंग.
0: Trending song number 10. Oh, yeah.

0: Coo-coo-coo. I can't do this coo-coo-coo for like so long, guys. But it sounds fantastic. Coo-coo.
1: They are fresh. They are hot. They are spicy. And they are happening. Join us on Masti.
0: Fresh and hot and spicy. That's what we try to do on this show, guys. With lovely Ganas. The newly introduced and launched Ganas. And the ones that are hitting right up the ladder. Bringing to you Masti Top Charts is Renuka. तो भाई अब ऐसा है कि चोली के पीछे तो जो है सो है, मतलब आगे क्या है हमारे इस शो पर, दैट इज मोर रेलेवेंट. आप जानते हैं रेलेवेंट, जी हाँ, इस शब्द से मुझे याद आया कि सुष्मिता सेन, अब किसको वो लड़की नहीं पसंद है, आप ये बताइए. मतलब आई रियली हैव एंजॉयड, आई हैव एडमायर्ड द वे शी इज ग्रोन, द वे शी कैरीज हर सेल्फ, द वे शी इज, शी स्टैंड्स अप फॉर हर सेल्फ, स्टैंड्स अप फॉर द राइट थिंग एंड इज अमेजिंग व्हेन शी स्टार्ट स्पीकिंग द राइट स्टफ, राइट. तो भाई ऐसा है कि शी बिकेम अ सिंगल मदर at the age of 24, जैसा कि हम जानते हैं, जब उसने अडॉप्ट किया हर एल्डर डॉटर रेने, एंड दिस वॉज इन द ईयर 2000. लेकिन आप जानते हैं, अपार्ट फ्रॉम ऑल द रेजिस्टेंस, घर वाले कुछ भी बोले, पड़ोसी कुछ भी बोले, रिश्तेदार कुछ भी बोले, सबसे बड़ी बात है दैट हर मैनेजर डिसाइडेड टू स्टॉप रिप्रेजेंटिंग हर. कहा मैं जा रहा हूं, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, क्योंकि अब तो तुम मां बन चुकी हो और मां बनने के बाद तो तुमको कैरेक्टर रोल्स भी नहीं मिलेंगे. हाय राम, अब क्या होगा. हाल ही में सुष्मिता वॉज टॉकिंग ड्यूरिंग एन इंटरव्यू एंड शी सेड द रेजिस्टेंस शी फेस्ड फ्रॉम द इंडस्ट्री आफ्टर डिसाइडिंग टू अडॉप्ट अ चाइल्ड. ओ माई गॉड. सभी कहने लगे कि भैया तुम अपने करियर के बारे में सीरियस ही नहीं हो. कौन इंसान 24 साल की उम्र में एक बच्चा अडॉप्ट करके बैठ जाता है. आर यू श्योर यू वांट टू डू दैट. एंड देन शी सेड सबसे बड़ी रेजिस्टेंस औरत ही औरत की दुश्मन होती है. एंड यू नो व्हाट, आई स्टैंड बाय दैट एज वेल. सो सेल्फ मेड वुमन, शी सेड आई डोंट हैव एनी गॉडफादर्स, नोबडी गेव मी एनी प्लेटफॉर्म, आई डिड एवरीथिंग ऑन माय ओन, इसीलिए तुम्हारे रूल्स मुझे अप्लाई नहीं होते. ओए होए, क्या बात कही है लड़की ने, मजा आ गया. And you're listening to Gaan number 9, which is from Cocktail 2 ke soundtrack se. Ji haan, ye tha 10 number par pichle hafte. Dekhiye, dheere dheere, kaise hum choti choti steps leke apne aap ko improve karte hain. Nahi, aise hi zindagi mein aage badhte hain. Kya baat hai? Good evening.
2: Hit us on the gram. It's Radio Musti 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page. Radio Musti 24/7 Singapore.
3: Check it out.
2: Trending song, number 9.

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।
2: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space, Dear Masti, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से। एंड ऑन मस्ती टॉप चार्ट्स, अभी अभी आप सुन रहे थे डियर मस्ती दिल से। आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद दैट शो। और सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे बहुत से सुनने वाले, जी हाँ, जो चिट्ठियाँ भी लिख रहे हैं, दे आर ऑल्सो इन लव विद दिस शो। सो गाइज, आई थिंक आपको ये वाला शो ज़रूर सुनना चाहिए। और क्यों सुनना चाहिए, आई टेल यू वाई। बिकॉज दिस इज़ वन शो जहाँ पर आपको पता लगता है कि सभी लोगों की जिंदगियों में क्या क्या परेशानियाँ बीत रही हैं, क्या क्या चल रहा है, क्या क्या स्ट्रेस से लोग गुजर रहे हैं, या क्या क्या खुशियाँ हैं उनके मन में। खैर, खुशियाँ लोग कम शेयर करते हैं हमारे साथ, लेकिन इस शो का पर्पज इज़ ऑब्वियसली टू मेक श्योर that you guys are doing good mentally and psychologically, you are in a good place, right? तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आपको कोई भी असमंजस में हैं आप, and you know, you sometimes think कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं ये करूँ या ये करूँ, then write to somebody who is absolutely neutral, और वो somebody हैं हम, all right? We don't need to know who you are, we really don't need to know anything, all we need to know is what is that issue which is troubling you in life, and we would love to support you in any way that we can. So isliye please ek baar bhi mat sochna ki yaar ye hamara mazak udayenge ya inko agar pata lag gaya hai meri zindagi mein to 10 aur logon ko batayenge. Na, the code is shh. That is the code. गाना नंबर 8 से ये पहुंचा है गाना नंबर 8 पर मतलब वही का वही रेडियो मस्ती 24/7 पर। आई सी यू नेक्स्ट आवर गाइस। फिलहाल के लिए ये है गाना नंबर 8 फॉलोड बाय अ ब्यूटीफुल रेट्रो जो कि यहाँ पर चलने वाला है एज अ फ्लैशबैक सॉन्ग, राइट? एंजॉय इट। मैं आपको मिलती हूँ 7 बजने के उस पार। आ जाओ
3: Radio Musty 24/7. Download Radio Musty 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app. Trending song number 8.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: Hollywood Flashback.

0: It's time for the Cricket Corner on Radio Musti 24/7 Live.
1: Namaste, adab, sat sri akal, and a very warm welcome to the Cricket Corner on Radio Musti 24/7 Live. I know you are enjoying the Radio Musti show, jo abhi chal raha hai, but right now it's IPL time at the Cricket Corner with me, aapka host aur dost Jitesh. मैं लेके आता हूँ डेली आईपीएल अपडेट्स मंडे टू फ्राइडे शाम 7 बजे.
2: दिन ढल जाए हर रात न जाए.
1: दिन ढल जाए हाय रात न जाए. जी हाँ, कल सारे आईपीएल फैंस की यही आह निकल रही थी क्योंकि कल तो कोई मैच ही नहीं था. कल कोई एक्साइटमेंट नहीं था. कल कोई आईपीएल एक्शन नहीं था. था तो सिर्फ इंतजार आज फ्राइडे नाइट का, जब होगा क्वालिफायर 2 मैच बिटवीन राजस्थान रॉयल्स एंड गुजरात टाइटंस. सो ऑल यू आईपीएल फैंस लिसनिंग टू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, आर यू एक्साइटेड फॉर दिस कॉन्टेस्ट टुनाइट? सो विल इट बी अनदर सूर्यवंशी शो और विल इट बी जयसवाल जुरेल आर्चर शो? आज का दिन है सुदर्शन गिल बटलर या फिर गुजरात के इनफॉर्म बोलर सिराज रबाडा और राशिद खान का? किसका दिन होगा आज? क्या होगा? कौन जीतेगा? कौन हारेगा? कौन कितने रन बनाएगा? कौन कितने विकेट लेगा? एवरी आईपीएल फैन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस नॉकआउट गेम एंड लेट्स सी हु विंस इट एंड मीट आरसीबी इन द फाइनल ऑन संडे 31st May. सो फॉर फुल ब्रेकडाउन ऑफ द फाइनल 2 मैचेस वॉच मी विद संतोष एंड नील ऑन मस्ती एवीआई टुनाइट एंड देन ऑन संडे विद द सीजन फिनाले एपिसोड ऑन मंडे 8:30 PM. Go to the Musti AVI tab on our app and watch all episodes anytime, anywhere. Main hu Jitesh with more masala, more cricket and more IPL action only on Radio Musti 24/7 Live. Now back to the show you are enjoying, but yaad rakhiye, IPL dekhte rahiye.
0: The Cricket Corner on Radio Musti 24/7 Live.
3: They are fresh. They are...

0: टू रूलिंग द काउंटडाउन, ये है मस्ती टॉप 20 पंपिंग अप फ्राइडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स, द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट, द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स, मस्ती टॉप 20 ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, द ओनली लाइव बॉलीवुड रेडियो अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया सिंस 2009।
1: कुछ भी, मैं तो कहती हूँ कुछ भी चलता है यहाँ पर रेडियो मस्ती 24/7 पर। बात करी हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री की, जी हाँ कुछ भी चलता है। एज यू नो दिस इज द फुल टू फुल ऑन बॉलीवुड शो विच इज कॉल्ड मस्ती टॉप चार्ट्स। From rocking the charts to ruling the weekly countdown, join us on Masti Top 20. Masti Top 20 पर आपका स्वागत कर रही है रेणुका। जी हाँ, 5 बजे से आपके साथ टिकी हुई हूँ यहाँ पर। कितने गाने चला दिए बताओ, गाने नंबर 7 पर पहुंच चुके हैं हम। हाय इतने सारे हो गए, हाँ हो गए, और इन सारों में ले देके 2 धुरंधर के गाने। आई एम सो प्राउड ऑफ दैट अचीवमेंट नाउ डेज गाइज, आई रियली मस्ट टेल यू। बात करने वाली हूँ मैं उनके बारे में जिनकी जिंदगी और जिनके करियर से हम सारे के सारे बड़े प्राउड होते हैं। जी हाँ, ऐ साडा रणवीर सिंह पुत्र। हाँ जी, तो अब हुआ कुछ ये है कि इनका एब्रप्ट एग्जिट फ्रॉम डॉन 3 एंड द Non-cooperation directive issued by the Federation of Western India Cine Employees just sounds so high and mighty, right? तो हमारी शोभा डे डालिंग ने क्या बोला? She has criticized the Federation's actions because she always stands for the opposite. आप बोलोगे left जाना, तो बोलेगी right जाना चाहिए। Right जाना तो वो नहीं नहीं, left में ही हमारा रास्ता है। That is शोभा डे for you. But sometimes she talks sense. By the way, that is my view. तो अब ऐसा है, she questioned what she described as a growing culture of power and control in the industry. एंड साथ में कहा, जो हमारा रणवीर सिंह है ना, ही इज लाइक द दिल्ली जिमखाना क्लब। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली जिमखाना क्लब का बहुत ही एक मेजर सा कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है कि भाई क्या है ये, इसको तोड़ो फोड़ो, इनको निकालो यहाँ से टाइप्स, यू नो, बिकॉज ये बहुत अपने आप को समझते हैं। सो शी सेज आई सी सिमिलैरिटीज बिटवीन द टू कॉन्ट्रोवर्सीज, और दोनों के दोनों जो हैं अथॉरिटी एक्सक्लूजन एंड पनिशमेंट से रिलेटेड हैं। उन्होंने कहा कि भाई रणवीर सिंह को क्यों इस तरह से निकाला जा रहा है, क्या बात है, मतलब बात क्या है, ये इतनी बड़ी बात हो गई कि आपने बोला छोड़ दो, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन टाइप्स। Like this gana, by the way, it's coming on number 7 Radio Masti 24/7। आप पूछोगे रेनू का बता नहीं तुमने पिछली बार कहा था, अरे मैं ही बताऊंगी क्या सब कुछ, कुछ तो याद रखा करो। गुड इवनिंग,
2: हिट अस ऑन द ग्राम, it's Radio Masti 24/7, and don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Masti 24/7 Singapore.
3: Check it out.
2: Trending song number 7.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोर स्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: थैंक यू टू शाही महारानी फॉर द स्पेशल ट्रीट।
3: थैंक यू टू शाही महारानी फॉर मेकिंग दिस मदर्स डे मोर स्पेशल।
4: थैंक यू शाही महारानी फॉर कंफर्टिंग एंड माउथ वाटरिंग फ्लेवर्स।
3: थैंक यू,
5: थैंक यू,
4: थैंक यू,
2: थैंक यू, वी लव यू।
6: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature Veg and Non-Veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply.
7: It's time for
8: Masti Song of the Hour.
9: Song of the Hour.

0: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: सातवें नंबर के बाद ना मन में बहुत ज्यादा धक धक धक धक धक धक धक धक होने लगती है। रेडियो मसी 24/7 पर आप हैं रेणुका के साथ। अरे नहीं पता आपको,
3: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
2: जी बिल्कुल, एंड योर डार्लिंग हैज बीन विद यू टिल्स 5 इन द इवनिंग ट्राइंग टू गिव यू द अपडेट ऑन द डाउनलोड ऑफ ऑल दैट्स हैपनिंग इन बॉलीवुड टुडे। ये सारी इंफॉर्मेशन के बाद ना आप लोग एक हफ्ता आसानी से जिंदा रह सकते हो, क्योंकि आपको इतना कुछ पता होता है। देयर सो मच ऑफ गॉसिप, राइट। वेल, अब एक और गॉसिप भी देती हूँ आपको, गाना नंबर 6 और 5 बताने से पहले, कि यो हनी सिंह, जी हाँ यो हनी सिंह फिलहाल आजकल फिर से बात कर रहे हैं अबाउट मेरा ना डार्केस्ट फेज था मेरी लाइफ का, जब मैं ड्रग्स लेता था। तो भाई इसमें नई बात क्या है, तू ये बता। मतलब he was at the peak of his fame, all right, and peak of his fame में he was using a substance, और वो substance का ये है कि भाई ये तो addiction हो जाती है, ऊपर से bipolar disorder अलग से, so he said उसके बाद मैं टोटली गायब हो गया था। क्यों हो गया था? मुझे अक्षय कुमार और शाहरुख खान ने बोला भाई तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, छोड़ दे ये सारी हरकतें। लेकिन नहीं, ऐसा तो होगा ही नहीं। सो वेल, 2011-2014 यो हनी सिंह, जी हाँ, इमेंस फेम, फाइनेंशियल सक्सेस, क्या क्या जो बोला। लेकिन मैं खुश नहीं था। आई वॉज एट माई पीक इन 2013 and 2014, लेकिन आई वॉज नॉट इन माई सेंसेस। मुझे लगता था मैं तो अलग स्टाइल से चलूंगा, ये वो, सब लोगों को यू नो आई शो देम डाउन, डिसरिस्पेक्ट करूंगा, और मैं अपने आप को भगवान मानता था। एंड देन आई रियलाइज्ड, भाई साहब मैं तो इंसान भी ना बन सका। वाह, नैना लड़ाने के लिए आप नंबर 6 पर ही टिकी हुई हैं पिछले

0: Radio Musty 24/7. Download Radio Musty 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: All right, धीरे धीरे हम पहुंच रहे हैं क्लाइमैक्स की तरफ. नहीं नहीं, आपके दिमाग में जो क्लाइमैक्स चल रहा है वो नहीं, बात कर रही हूँ मैं मस्ती टॉप चार्ट्स के क्लाइमैक्स की.
2: They are fresh, they are hot, they are spicy and they are happening. Join us on Masti Top 20.
1: और अगर कोई इतना hot, happening, spicy हो तो भाई उसको तो होना ही चाहिए ना Masti Top Charts में. मैं इंसानों के अलावा गानों की बात भी कर रही हूँ. Well, on Radio Masti 24/7 guys. धीरे धीरे देखिए ना, आप और हम चलते चलते पहुंच रहे हैं towards the end of the show. And end of the show में it gets totally exciting क्योंकि हमारे यहाँ पर लिखने लग जाते हैं. हाँ जी, जाइए, सजना नहीं आया अभी तक. You know who you are. साथ ही में आप लिखने लगते हैं कि नहीं, इस बार तो गाना दूसरा होना ही चाहिए. मतलब एक गाना नंबर वन पर पहुंच पहुंच के बहुत टाइम हुआ. भाई ये भी बात मैं मानती हूँ, लेकिन करें तो क्या करें. बॉलीवुड में अगर कोई नया गाना आ ही नहीं रहा तो मैं बॉलीवुड टॉप चार्ट्स में गाना कहाँ से लाऊं नंबर वन पर. बट एनीवे, वो तो रही मेरी प्रॉब्लम. आपकी प्रॉब्लम ये है कि भाई आपको पता ही नहीं है कि वेदांग रैना जो है वो कितना प्रैक्टिकल है. अब आप बोलेंगे ये कौन है. वेल यू नो वॉट गाइज, आई हैव डिसाइडेड मैं हर चीज पे अपडेट नहीं करने वाली हूँ. आपको पता है आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रैंड चाइल्ड ऑफ सुपरस्टार अमिताभ बच्चन. जी हाँ, आप किसी ने जब डेब्यू किया हो विद अ फिल्म मेकर लाइक जोया अख्तर, बड़ी हैरानी होती है कि भाई वेदांग रैना है ना, ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू डू मोर फिल्म्स आफ्टर द आर्चीज. उसने कहा भैया अब मैं पढ़ाई कर लेता हूँ, बिकॉज इतनी घटिया फिल्म बनी थी वो. लेकिन किस्मत के पास तो दूसरे प्लान्स थे, तो और भी बड़ा डेब्यू. जी हाँ, और भी बड़ा दैन हिज डेब्यू, जिगरा, जहाँ पर ही शेयर्ड द स्क्रीन स्पेस विद आलिया भट्ट. अब उसके बाद इनको लगा यार अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो फिर उसके बाद मैं वापस आऊंगा. पीरियड ड्रामा डायरेक्टेड बाय इम्तियाज अली एंड को-स्टारिंग नसीरुद्दीन शाह, दिलजीत दोसांझ एंड शर्वरी. तो फिर सब कहते हैं देखिए नेपोटिज्म डज नॉट एग्जिस्ट इन बॉलीवुड, लाइक रियली. तो भाई बात हुई कि आपको किस तरह से इम्तियाज अली ने आपको अप्रोच किया. तो इट वाज जनरल मीटिंग, कॉमन अकरेंस है इंडस्ट्री में. आप मिलते हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स से और उसके बाद वो मतलब आपको ध्यान में रखते हैं. बट ही सर इम्तियाज सर की मीटिंग वाज वन ऑफ दोज जहां पर बहुत ही बढ़िया कॉन्वर्सेशन हुई, एक घंटे से भी ज़्यादा. और फिर दीज मीटिंग्स नॉर्मली लास्ट 10 मिनट, लेकिन वहाँ मज़ा आ गया. कश्मीर, म्यूजिक, कल्चर, बड़ी सारी बातों के बारे में बात करी. एंड द नेक्स्ट आई रियलाइज कि भैया ये फिल्म मेरी जेब में आ चुकी है. नॉट बैड, नॉट बैड. तो चलिए एक बढ़िया सा ऐसा गाना सुनते हैं जो कि आपको याद दिलाएगा एक प्यार भरी शाम की. और उसके बाद आपसे इंट्रोड्यूस करेंगे हम चार गाने. जी हाँ, सो कहीं मत जाइएगा. 4-3-2-1 कमिंग अप.
0: बॉलीवुड फ्लैशबैक

0: कोई और बात नहीं होगी, कोई और बात होगी ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि चल रहा है
1: From rocking the charts to ruling the weekly countdown. Join us on Masti Top 20.
0: सिर्फ चार गानों की बात होगी. जी हाँ,
2: इनकार के बहाने कई बार
3: करते
0: ये गाना था पिछले हफ्ते नंबर टू पर. जी हाँ, सीधा न्यू एंट्री. इस बार क्या लगता है कहाँ जाएगा? अब रह गए हमारे चार गाने. It's from Pati Patni aur Wo Do, followed by again a beautiful romantic track guys introduced this week, and it's called Socha Na Tha.
4: Meri duniya ban jayega.
0: पता नहीं लड़की को कोई जाएगा कैसे बोल सकता है. मतलब ठीक है वो जैसी भी लगती है, लेकिन तुम उसको ये तो नहीं कह सकते ना कि सोचा ना था तू ऐसे बन जाएगा.
4: वो सारिया विसर गया रामा वे केड़े पासे जाइए.
0: लिटरली व्हाट रणवीर सिंह इज सेइंग नाउडेज, केड़े पासे जाइए सजना.
4: सानू सारिया
0: जब से बॉयकॉट की बातें शुरू हुई हैं, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फोर गानास.
4: केड़े पासे जाइए.
0: And of course, the one and only.
4: Gehra hua, gehra.
0: Dhurandhar ka.

0: और फाइनली वो दिन आ ही गया। ओहो, वो दिन आ ही गया, खुशियों वाला दिन आ ही गया, मतलब टाइम आ ही गया। रेडियो मस्ती 24/7 पर, जी हाँ, आप सुन रहे हैं शाम 5 बजे से।
1: दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर स्पाइसी एंड दे आर हैपनिंग। जॉइन अस ऑन मस्ती टॉप 20।
0: आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद केड़े पासे जाइए सजना। फॉर सम रीजन मैं तो मतलब आई जस्ट कैन नॉट गेट ओवर इट। बहुत ही प्यारा गाना, और जितने लोग लड़ रहे हैं मेरे साथ यहाँ पर हमारे स्टूडियो में, नहीं नहीं इस गाने को टॉप चार्ट से ही निकाल दो, उनको भी समझ में आ गई कि जब हमारे सुनने वाले इस गाने को रिक्वेस्ट करते हैं उन्हीं के शो में, तो इस गाने की क्या अहमियत है। आई एम इन लव विद इट स्टिल। व्हाट एन अमेजिंग ट्रैक, मतलब उफ, इट टचेस द इमोशंस ऑफ द डीपेस्ट हार्ट, मतलब डीपेस्ट जहां पर होता है। बट एनीवे, ये तो मेरी प्रॉब्लम है ऑन रेडियो मस्ती 24/7। गाइस, रह गए हैं दो गाने, जी हाँ दो गाने, बताइए इनमें से पहले नंबर पे कौन सा है। एक दो तीन चार पांच, ओ माय गॉड, द नंबर ऑफ मैसेजेस दैट हैव कम इन स्ट्रेट अवे। तेरा हुआ and of course romance irrespective wins the charts today।
2: meri duniya ban jayega।
0: कुछ भी हो, प्यार तो प्यार ही होता है ना। रेडियो मस्ती 24/7 पर, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, मैं यहाँ से भाग रही हूँ एंड आई कैन सी एटलीस्ट अभी भी मैसेजेस आते चले जा रहे हैं, मतलब आई हैव ऑलरेडी काउंटेड 19-20। ओके, टू मेनी मैसेजेस कमिंग हियर टेलिंग मी व्हिच इज गोइंग टू बी गाना नंबर वन। आप में से कुछ सही है और कुछ नहीं है सही, बट वेल यू फाइंड दैट आउट इन जस्ट अबाउट 3 seconds from now. Have a fantastic weekend, guys. This is Renuka signing off from Radio Masi 24/7. Remember to smile, because smile is the second best thing you can do with your lips. Bye. Take care. Enjoy the 2 tracks.
3: Trending song number 2.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
4: Good morning.
5: Tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
6: Trending song.
7: Check it out. Number one.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
1: हाँ, मैं एक लड़की, बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
0: उसे बताया क्यों नहीं?
1: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं? वो किसी और को चाहती है, बहुत चाहती है।

0: शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: The perfect recipe for you to unwind. Musty weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल, इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
2: The best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: perfect recipe for you to unwind. Musty Weekends only on Radio Musty 24/7 Live.
1: संजना,
2: I'm sorry, मैंने आपको पहचाना नहीं।
3: तेरे लबों पे इनकार है, मेरे लबों पे इकरार है। हाँ यही तो है सब निशानियां,

0: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है।
1: तुमको लेकर
0: ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है।
2: मुझे चांद पहले चलो।
0: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बन के रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
2: रात अकेले
3: है। इट्स द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। हैव अ मस्ती भरा वीकेंड।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
4: Good morning.
3: Perfect recipe for you to unwind. Musty Weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।
2: वीकेंड का मजा विद द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लू, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
2: रात अकेली है
3: तो क्या, हम तो आपके

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
2: चेक इट आउट
3: रात अकेली है तो क्या हम

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गेम जय सिंगापुर, सारू जय।
0: नो टॉकिंग अलाउड, सिर्फ म्यूजिक बोलेगा। बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे,
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
0: रात अकेली है तो क्या, हम तो

एक बात समझ में नहीं आती, अच्छे लोग क्यों मरते हैं, अच्छों के साथ बुरा क्यों होता है, रोने वाला क्यों हंसता है, हंसने वाला क्यों रोता है। सह लिया बहुत सह लिया, खामोशियों में बहुत रह लिया, अब दिल का शोर सुन, इरादे कुछ और

यहाँ से कहाँ जाऊँ, कहाँ मैं छुप जाऊँ, ये आधा सा दिल मैं कैसे लगाऊँ, खुद से जो

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय?
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल? इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग?
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा?
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप?
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Josh.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: बनाना चाहिए? आप बोलो, हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती बॉइस, आपकी चॉइस।
1: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
2: Check it out.
3: Perfect recipe for you to unwind. Musti Weekends only on Radio Musti 24/7 Live.

0: आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट
1: Weekend ka maza with the best of Bollywood playing only on Radio Masti 24/7 live.

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें,
1: आई लव यू रसना,
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Musty 24/7 Live.